0: rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: देखो भाई, अगर हो गई है गलती तो माफ कर दीजिएगा. गलती माफ करने को बड़े कहते हैं और बड़प्पन दिखाइए. अभी के लिए let me wish you all a very good morning. सुबह के 5:06 होने वाले हैं. Good morning everyone. Really hope आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है. नीतू आपके साथ Thursday morning को. नीतू यस, क्या करे, आपसे इतना प्यार करती हैं तो बस सुबह सुबह आपकी मॉर्निंग को गुड गुड विश करने आ गए हैं. लवली मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार टू यू ऑल. रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और इस नए दिन की शुरुआत करने के लिए एकदम तैयार, एकदम सज हैं. हां जी, थर्सडे मॉर्निंग 20 अगस्त की तारीख ऑलरेडी. सो व्हाटएवर यू माइट बी स्टिल अटेंड, दो घंटों का ये सुरीला सफर राइज एंड शाइन नीतो के साथ. आपके मैसेजेस, सैकात नफ नफ दोज नफकात, और क्या चाहिए, गाने अच्छे, आप जैसे लोग अच्छे, बस मूड को भी एकदम अच्छे बनाते हुए आगे बढ़ेंगे.

0: shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: ये है timeless evergreen classics जो हमेशा दिलों के किसी ना किसी कोने में बसते रहते हैं. सवा पांच बज चुके हैं. बोकु हांश going to work. तो चले बच्चे लोग भी जाग चुके हैं और इस third term की शुरुआत हो चुकी है. So get going and बस focus कीजिएगा. And उसके लिए आपको खाना चाहिए. So breakfast बिल्कुल skip मत कीजिएगा. अभी के लिए आपके messages को हम skip नहीं करेंगे. 549912 Pranam Radio Musti, driving right now to Sach Hospital, Bonkuhash. Aapko Mr. Jason, Jibban, Temba, Omiran, Danu, Angotia, Satmi Akash, Sharman, Ramdeva, Mevin and Radio Musti ko thanks. Hum aapko thanks kahenge, dost, humare hum safar banne ke liye. Good morning, namaste, Sheila ji from L'Espérance Trébuchet. Aaj aapke liye khushi ke din hai. Chale, next gana. आज ही क्यों, हर रोज आपके लिए खुशी के दिन हो, यही कामना करते हैं. नमस्कार मिस्टर टोनी फ्रॉम रुजबॉ. वी कैन सेव रिलेशनशिप्स एंड इफ वी अंडरस्टैंड अ सिंपल फैक्ट दैट पीपल आर नॉट रॉन्ग, दे आर जस्ट डिफरेंट फ्रॉम आवर एक्सपेक्टेशंस. दैट्स वेरी ट्रू. कभी कभी ना हम लोग इतना एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि हम भूल जाते हैं कि हर कोई की अपनी आइडेंटिटी होती है और हर कोई अपना जैसा नहीं होता है. सो बस जैसे लोग हैं उनको हम अपनाते चले. किसी को बदलने की कोशिश मत कीजिए. जो जैसा है वैसा ही रहे, बस प्यार से रहे. व्हाट से. नमस्कार ललिता एंड जीतन फैमिली, कैसे नहीं तू. बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं. एंड आप किशोर कुमार के फैन हैं तो चले जबरदस्त गाने आपके लिए भी चलाएंगे. यहाँ पर रफी साहब के भी फैन हैं, मुकेश के भी फैन हैं, सबको याद करते हुए नेक्स्ट गाना आपके नाम सरोज, राजन, मोनिका, उमेश एंड बस जितने प्यारे प्यारे एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं आपके लिए. लोट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू लवली कपल आशीष एंड दिया. और घर में नए बेबी आए हैं सो बधाइयां आपको. और परी आ गई हैं, लक्ष्मी माँ आ गई हैं. तो ब्लेसिंग्स फ्रॉम दादा संजीव, दादी अंजनी, गौ दादी हैं भगवंती, सभी कालुआ, जमुना और चिनापियन परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं. कैसे हैं ज्योति, शतुबिनागस से आपके पूरे परिवार के नाम एंड माधव फैमिली. गुड मॉर्निंग आपको भी दीपक एंड आपके सभी डियर वंस के लिए. विदाउट फॉरगेटिंग साधन एंड मुकेश लालमाची से.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: अगर आप ये ऐसे ही प्यार से साथ निभाते चले ना तो हमारी आपके साथ साथ जो मॉर्निंग है वो एकदम गुडी गुड बन जाए. बस आपसे यही मांग करेंगे कि अभी इट्स नो रिक्वेस्ट टाइम. अभी फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है. यानी कि जो भी गाने हैं बस आपको ही सोचकर हम प्लेलिस्ट बनाते हैं और आप तक गाने पहुंचाते हैं. थैंक यू. 5:32 एंड इस वक्त आपको बहुत ठंड लग रही है. सुया बिहारी कंगोमा से हैं तो गर्मा गर्म इलायची वाली चाय आप पी रहे हो. क्या बात है. अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको. आप है कौन यहाँ पर. मैं देख रही हूँ मिस्टर ललित मोहन भट्ट और आप अपनी वाइफ को बहुत मिस कर रहे हैं. बस इन गानों के ज़रिए आप अपनी मॉर्निंग को खुशगवार बनाते चले और 5499-1294 पर अपनों के नाम मैसेजेस भेजते चले.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: और एक बार फिर आज विजुअल शुरुआत आपके साथ.
2: एरीज मेष राशि.
1: ऑलराइट, आज परिस्थितियां जो हैं प्रतिकूल हैं, किसी परेशानी में आप आ सकते हैं. स्वास्थ्य पर ध्यान दें, वाहन धीरे चलाएं, कोई रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा. प्रेम संतान की स्थिति पहले से सुधर चुकी है और व्यापार भी लगभग ठीक ठाक है, बस अपना ख्याल रखिएगा.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. प्रेमी प्रेमिका की मुलाकात संभव है. डेटिंग के लिए अच्छा अवसर मिलेगा. प्रेम संतान अच्छा है. व्यापार भी एकदम बढ़िया, लेकिन कड़क भाषा के प्रयोग से बचे, वरना आप ही प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: शत्रु जो हैं एक्टिव रहेंगे आपके, और बाप रे बाप, छोटी मोटी परेशानियां शारीरिक रूप से आपको परेशान कर सकती हैं. प्रेम संतान अच्छा रहेगा. व्यापार भी एकदम आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, बस अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: भावनाओं में बहकर कोई निर्णय मत लीजिएगा. लव में तूतू मैमे का संकेत है और स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय रहेगा. वैसे आपके लिए व्यापार अच्छा है. स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम, मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा खराब स्थिति में रह सकती है. सुबह से आप अपने दिमाग को शांत रखिएगा एंड जो भी कदम उठाएं सोच समझ कर ही उठाएं.
2: लियो सिंह राशि.
1: एनर्जेटिक आप जो है मूड रहेगा आपका. स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है. प्रेम में थोड़ी दूरी चल रही है. संतान को लेकर थोड़ा मन परेशान है. भूमि वाहन जो है उनकी खरीदारी का योग बन रहा है, लेकिन गृह कला के भी संकेत हैं. वैसे स्वास्थ्य जो है हेल्थ ठीक ठाक रहेगा. प्रेम और संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम और व्यापार अच्छा रहेगा.
2: वर्गो कन्या राशि.
1: राइट, कन्या राशि का स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन सर में कुछ भारीपन और नेत्र से संबंधित परेशानी इत्यादि बनी रहेगी. डेफिनेटली आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए. पिता से दूरी रहेगी. राजनीतिक पक्ष थोड़ा सा बहुत सपोर्ट नहीं रहेगा. उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद उतना मिल नहीं पाएगा. और बाकी स्वास्थ्य जो है मध्यम रहेगा. प्रेम और संतान की स्थिति अत्यधिक रहेगी. व्यापार भी एकदम अच्छा रहेगा. वैसे कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप एनालाइज करके ही आगे बढ़ें.

0: लीब्रा तुला राशि
1: स्वास्थ्य जो है मध्यम रहेगा, ऊर्जा का स्तर घटा हुआ है, प्रेम और संतान भी मध्यम है, व्यापार बिल्कुल ठीक ठाक है और धनागम जो होगा और बस जो परिवार में है आपके उसमें वृद्धि होगी, प्यार बढ़ेगा, लेकिन निवेश करेंगे तो घाटा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और जितना हो सके परिवार का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, लेकिन हाँ आप भी अपने परिवार को सपोर्ट कीजिएगा।
0: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि
1: भाग्यवान बने हुए हैं, आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता होगी जीवन में, प्रेम और संतान की स्थिति बहुत ही अच्छा है और अच्छी है, वैसे व्यापार भी और अच्छा ही रहेगा, यानी कि आपका दिन एकदम बढ़िया है आज।
0: सजिटेरियस धनुराशि
1: खर्च को आपको कंट्रोल में रखना होगा वरना परेशानी आपको ही होगी, स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम, प्रेम संतान की स्थिति अच्छी रहेगी, व्यापार में आपको लाभ होंगे, निवेश मत करिएगा, वैसे चिंताकारी यानी कि सृष्टि का सृजन भी हो सकता है, अगर आपको किसी अपने या फिर बड़ों की सलाह चाहिए तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे।
0: कैप्रिकॉर्न मकर राशि
1: आय के नवीन स्रोत बनेंगे, पुराने स्रोत से भी आपके पैसे आएंगे, यात्रा का योग बनेगा, रुका हुआ धन वापस होगा, स्वास्थ्य प्रेम व्यापार सब कुछ अच्छा रहेगा, शुभ समाचार की प्राप्ति का योग बन रहा है।
0: एक्वेरियस कुंभ राशि
1: राजनीति लाभ मिलेगा, कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगी, व्यावसायिक सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम, प्रेम संतान की स्थिति मध्यम और व्यापार जो है एकदम बढ़िया रहेगा, बस आप अपने अपनों का साथ दीजिएगा जरूर एंड हो सके तो आप जो भी बोले सोच समझ कर बोलेगा। हाँ
0: पाइसेस मीन राशि
1: जोखिम से उबर चुके हैं, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, प्रेम संतान की स्थिति पहले से बेहतर है, व्यापारिक स्थिति भी अच्छी है, यात्रा का योग बन रहा है, वैसे धर्म कर्म में हिस्सा लेंगे और ऊपर वाले का आपको साथ मिलेगा, तो बस अपने दिन को शुभ बनाएं और विशिंग यू अ लवली डे अहेड, बेस्ट ऑफ लक।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती

अभी तक तो हम ही हैं 5:56, बस आप ही हमेशा की तरह साथ निभाते रहिएगा. एंड 6 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार. लेट मी विश अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको इंदिरा जी, रेशमा विमालांजो, क्रेशा केशव, नील मायशा, तान्या, मोधा ब्लॉश से, दुदिका, रिव्य दिखेल से, एंड रघुजाना परिवार. बाकी मैसेजेस 6 बजे के समाचारों के बाद.

0: time to Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
2: घड़ी मिलाते चलिए सुबह के ठीक 6 बजे हैं. संध्या सुबह का पहला फ्लैश न्यूज आपसे करूँ ना. नमस्कार.
3: नमस्कार नीतू शाह, सभी को नमस्कार. पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों की जांच के लिए जिम्मेदार आयोग आईपीसीसी से जुड़ने वाले दो नए सदस्यों ने इस आयोग से संबंधित कानून में संशोधन लाने की आवश्यकता पर जोर दिया है. भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के बीच आज मुलाकात, जिसके बाद पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए सरकार से सरकार साझेदारी के तहत बहुप्रतीक्षित एमओयू का आदान प्रदान किया जाएगा. मॉरिशस और जिम्बाब्वे के बीच व्यापार सहयोग को मजबूत करने की दिशा में प्रयास जारी हैं. दोनों देशों के बीच निवेश के अवसरों को बेहतर तरीके से तलाशने और उनका विस्तार करने के मुद्दे पर एक बिजनेस फोरम लगाया गया. कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल के अनुसार एम्सो में नए पशु चिकित्सकों की भर्ती की तैयारी चल रही है. इस संबंध में वेटरिनरी काउंसिल और मॉरिशस के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है. विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अभूतपूर्व कड़ी आर्थिक कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की है. दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाने के बाद ट्रंप ने ये चेतावनी दी कि जो भी देश ईरान को आर्थिक मदद या राहत देने की कोशिश करेगा उसे भी कड़े आर्थिक दंड का सामना करना पड़ेगा. और अब मौसम की रिपोर्ट. मस्करिंस के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर हल्की हवा पाई जा रही है. अनुमान है कि सुबह के वक्त मौसम सुहाना रहेगा, दोपहर में भी धूप खिली रहेगी, केवल पश्चिम में कुछ घड़ी के लिए बादल घिराएंगे. तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की और अस्थिर हवा चलेगी. प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा, लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं. आज के लिए सूर्योदय 6:28 पर, सूर्यास्त होगा 5:58 पर. तो पूरा समाचार बुलेटिन 6:30 बजे, तब तक के लिए अनुमति दें. नमस्कार.

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.
2: शिवशकर 3 मिनट वेलकम बैक आपके मैसेजेस ऑन सेंकात नफ नफ दूस नफ काटा इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू रेडियो मस्ती टीम थैंक यू सो मच भवा बाबू से धनेश्वर जी पत्नी सुनीता रेखा संजीव निशा दावे दुस परिवार हैव अ ग्रेट डे आई हैड टू यहां पर साथ देने के लिए थैंक यू सो मच आप हैं कौन और सरोज गाने आपको अच्छे लगे ओह थैंक यू सो मच बस रेडियो मस्ती टीम गुड मॉर्निंग किशन रघुनाथ सुखी नाम से आपकी लवली वाइफ माला बेटियां हैं जिया और रिया के नाम साथ में है अमृता फ्रॉम पुएटो साबला वेरी गुड मॉर्निंग आपके मैसेजेस फटाफट ताकि जितने भी लोग काम पर जा रहे हैं एटलीस्ट अपना नाम तो सुन लें वेर से विशिंग अनु विशिंग मुना हैप्पी बर्थडे वाइफ निशा अंशु आकाश आशना राजीव की तरफ से ढेर सारा प्यार साथ में है रेखा बेटा अंश पोम्बोजियो से सब परिवार के लिए

हुई ना हलचल आपके दिल में, यही होता है जब प्यार होता है, और जब आपकी नियत अच्छी होती है, जब आपकी बोली अच्छी होती है, आपकी सोच अच्छी होती है।

आपके पूरे परिवार के लिए यही अगला गाना आपके लिए जी राधे राधे गाना गुजार टू ऑल माय फ्रेंड्स फ्रॉम एसएसएस कार्ट से मिलते हैं मेरा राम दिकल मोता ब्लॉन्च से आपके सभी डियर वंस के नाम

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 617. Thank you so much हमारे हमसफर बनने के लिए. It's a very good morning आपको पारुषी, परिधि, पृथ्वी, प्रिया, निशिका, साथ में नितिन, विशाल, यनेश and to Radio Musti team. Thank you जी. Blessed Thursday to you all. अंजनी जी आपका भी साथ मिल रहा है, क्या बात है. गाना प्लीज हो जाए मेरी बेटी स्वीटी के नाम. दामाद हैं कमलेश, ग्रैंड चिल्ड्रन शेषना, योहन, रोहन, रागिनी जी मोसल मोसौसुसी से. यही अगला गाना आपके नाम सुनीता जी फ्रॉम विलबाग, पति श्याम, एंजल येशना एंड हैव ए नाइस डे यू टू अहेड. कैसे हैं लीना फ्रॉम प्लेन दे होश, गाना गुजार टू लिटिल प्रिंसेस जिया और आपके पति हैं राजीव. शिव शंकर परिवार बस रेडी हो रहे हैं काम पर जाने के लिए. विशिंग यू ऑल बो कुहाश एंड बेस्ट ऑफ लक.

ना कोई तो बना है किसी ना किसी के लिए ना, तो जो आपके पास है उनको हमेशा प्यार से रखे, संजो कर रखे, लेकिन सम्मान, रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 6:23 6:30 आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन, उसके बाद वेदिता के साथ मॉर्निंग बीट. ये मॉर्निंग आपके लिए शुभ, एकदम बेस्ट हो. बहुरानी श्वेता हुकुम हबी रोशन बुनाकर से बहुत थैंक यू सो मच. आप हैं कौन? वेल, आप हैं रोशन, तो चलिए साथ निभाती रहिएगा.

नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम के बीच आज मुलाकात, जिसके बाद पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए

0: सरकार से सरकार साझेदारी के तहत बहुप्रतीक्षित एमओयू का आदान प्रदान। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों की जांच के लिए जिम्मेदार आयोग आईपीसीसी से जुड़े दो नए सदस्यों ने इस आयोग से संबंधित कानून में संशोधन लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉरिशस और जिम्बाब्वे के बीच व्यापार सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में प्रयास जारी। दोनों देशों के बीच निवेश के अवसरों को बेहतर तरीके से तलाशने और उनका विस्तार करने के मुद्दे पर एक बिजनेस फोरम लगाया गया। कृषि उद्योग मंत्री डॉ. अरविंद बुलेल के अनुसार एम्सो में नए पशु चिकित्सकों की भर्ती की तैयारी चल रही है। इस संबंध में वेटरिनरी काउंसिल और मॉरिशस के साथ विचार विमर्श किया जा रहा। और विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के खिलाफ अभूतपूर्व क्रशिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा की। दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाने के बाद ये फैसला लिया गया। और अब समाचार विस्तार से। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम से आज मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के बाद पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए सरकार से सरकार साझेदारी के तहत बहुप्रतीक्षित एमओयू का आदान प्रदान किया जाएगा। इसके बाद प्रेस को संबोधित कर बयान भी जारी किया जाएगा। इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन आईपीसीसी के अध्यक्ष पद पर सतीश फुगू की नियुक्ति के बाद आयोग में न्याय क्षेत्र के दो नए पेशेवर शामिल हुए हैं। रेणुका ब्रिजमोहन और मामाद उजिया ने कल दोपहर बाद स्टेट हाउस में राष्ट्रपति धरम गोकुल के समक्ष पद की शपथ ली। उन्होंने इस आयोग से संबंधित कानून में संशोधन लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। आईपीसीसी का मुख्य दायित्व पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों की जांच करना है। कुणाल गुजी, गीता सुनारान।
1: स्टेट हाउस में दो नए न्याय के क्षेत्र के पेशेवरों ने इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन आईपीसीसी के सदस्य के रूप में पद की शपथ ली। इनमें रेणुका ब्रिजमोहन और मोहम्मद उजिया शामिल हैं। नए सदस्यों का कहना है कि आयोग में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और आयोग से जुड़े कानून को अपडेट करने की जरूरत है, ताकि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उनके काम के दौरान की गई शिकायतों के बढ़ते मामलों से निपटा जा सके। सबसे बड़ा प्रश्न है कि कर्मचारियों की कमी है, जांच के लिए ज्यादा लोग होने चाहिए। कानून को अपडेट करना चाहिए ताकि आयोग आगे बढ़ सके और जनता को नतीजे प्राप्त हों। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ करीब 3,000 शिकायतें अभी समाधान के इंतजार में हैं। आईपीसीसी के अध्यक्ष के अनुसार अब काम की शुरुआत आयोग के आंतरिक नियमों और पुलिस की कार्य प्रणाली से जुड़ी प्रक्रियाओं में संभावित बदलाव के साथ की जा सकती है। आईपीसीसी के अध्यक्ष सत्य व्यास फुगु कहते हैं, पुलिस ताकत में कई चीजों का समाधान करना है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स, व्यवहार, अनुशासन को लेकर अगर पुलिस के स्तर पर ही समस्या का समाधान किया गया तो ये आईपीसीसी तक नहीं पहुंचेगी। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों में 5% से भी कम मामले आखिरकार सजा तक पहुंचते हैं। कई बार शिकायतों को मामूली माना जाता है या फिर पुलिस की कार्रवाई को नियमों के अनुरूप पाया जाता है।
0: मॉरिशस और जिम्बाब्वे के बीच व्यापार सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में प्रयास जारी हैं। दोनों देशों के बीच निवेश के अवसरों को बेहतर तरीके से तलाशने और उनका विस्तार करने के मुद्दे पर कुडा आउट सेंटर में एक बिजनेस फोरम लगाया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से 50 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। एजेंडे में ठोस व्यापार पहलों और कारोबारी अवसरों पर विचार विमर्श किया गया। उद्देश्य एक विविध और मजबूत इलाकाई व्यापार प्रवाह का निर्माण करना है। मॉरिशस और जिम्बाब्वे के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बीच एक एमओयू पर भी हस्ताक्षर किया गया। विस्तार रिया रामबोजन की इस रिपोर्ट में। ये कारोबारी फोरम डर्बन में हाल ही में संपन्न हुए सैडेक शिखर सम्मेलन की निरंतरता के रूप

0: रूप में आयोजित किया गया। जिम्बाब्वे के 30 से अधिक प्रतिनिधि मॉरिशन बाजार की संभावनाओं का जायजा लेने के लिए यहां एकत्र हुए। 2025 में जिम्बाब्वे की ओर मॉरिशन माल निर्यात लगभग 4,54,000 अमेरिकी डॉलर का था। वहीं ऐसे में दोनों देशों के व्यापार सदनों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर के साथ इस साझेदारी के विस्तृत होने की उम्मीद है।
1: Presque 17% des investissements à travers NOAFC qui rentrent dans Zimbabwe. Donc l'écosystème d'intervention est déjà là. Et nous avons bonifié. Nous avons bonifié dans le domaine agricole, nous avons bonifié dans le domaine des technologies. Ce MOU, l'IPVIN formalise, mais aussi l'IPVIN donne un boost à ce segment d'opportunité entre Maurice et Zimbabwe.
0: एक और जिम्बाब्वे है दक्षिणी अफ्रीका का एक ऐसा देश जो खनिज संसाधनों से समृद्ध है और जहां कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्र भी तेजी से विकसित हो रहे हैं। दूसरी ओर मॉरिशस, जिसके पास 2.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र, एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र और डबल टैक्सेशन से बचाव के समझौतों का व्यापक नेटवर्क है और चिकित्सा उपकरणों के निर्यात जैसे नए सहयोग के अवसर सामने आ रहे हैं।
2: Today's forum comes at a time when Africa is being called upon to redefine its economic future. That is why this mission is important. We are gathered here because we believe that meaningful economic partnerships are built through engagement, dialogue, and action.
0: सहयोग का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है, खासकर बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के चलते।
3: Zimbabwe has significant agricultural potential. Mauritius has experience in financial services, agro-processing, investment and market access. This is therefore considerable scope for cooperation in irrigation, climate smart agriculture, agricultural technologies, storage, logistics, processing, packaging and distribution.
0: मॉरिशस अफ्रीका एशिया और यूरोप के बीच एक सेतु की भूमिका निभाता है, इसलिए सहयोग की संभावनाएं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भी विस्तारित हो सकती है।
4: collaboration poussée avec l'Inde. Par exemple, businessman de Zimbabwe, Zokavin Morris, restructure cette finance, faire une partie de manufacturing et aussi, par exemple, de fourrure de coton aussi, par exemple. Comment Morris a une expertise liée dans le textile? Comment nous sommes complémentaires et comment nous sommes capables après d'exporter ce coton qui pour fabriquer Maurice qui sortit de Zimbabwe, par exemple, allant en Inde aussi.
0: Zimbabwe ka pratinidhi mandal, Mauritius ke vinirman, manufacturing kshetra ka bhi daura karega, iske alawa bandarga aur Eben ki yatra bhi nirdharit hai. गुलशन गोविंद को कल बाओबो अदालत में पेश किया गया। कैनाबिस की खेती और मिथाडोन रखने के आरोपों के संबंध में उनकी जमानत पर रिहाई की अर्जी पर बहस की गई। पुलिस ने संदिग्ध की जमानत की मांग का विरोध किया। मामले की अगली सुनवाई सोमवार 24 अगस्त तक होगी। विस्तार लवीना सूफी और अशिता रघु के साथ।
5: मामले की सुनवाई मैजिस्ट्रेट बीबी फातिमा शर्फा पोगोबाली के समक्ष हुई। आजसू के जांच अधिकारी ने आरोपी को जमानत पर रिहा किए जाने का विरोध किया। उन्होंने तीन जोखिमों का हवाला दिया, फरार होने का जोखिम, दोबारा अपराध करने का जोखिम और गवाहों को प्रभावित करने का जोखिम। अधिकारी के अनुसार पुलिस के पास ऐसे सबूत हैं जिनसे गुलशन गोविंद की कथित संलिप्तता का पता चलता है। आरोप है कि वह रेनियन टापू से करीब 155 किलो गांजा आयात करने की साजिश में शामिल था। इस गांजे की अनुमानित कीमत 234 मिलियन रुपए बताई गई है। हालांकि जांच अधिकारी ने कहा कि फिलहाल वह इन सबूतों का विवरण सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। जांच अधिकारी ने यह भी बताया कि पूछताछ के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर गुलशन गोविंद ने चुप रहने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। आरोपी ने कथित तौर पर अपनी नशे की लत के इलाज के लिए मेथाडोन लेने की बात स्वीकार की है। उसने अपने घर की छत पर गांजे के पौधे रखने की बात भी मानी है। हालांकि उसका कहना है कि ये पौधे केवल निजी इस्तेमाल के लिए थे और उसने इन्हें बेचने की किसी भी

0: शाह से इनकार किया है। वहीं उसके वकील हुबेन मोहंगापिले ने आरोप लगाया कि जांच अधिकारी इस मामले को मॉरिशस और रेनियन के बीच गांजे के आयात से जुड़ी जांच के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
1: और पुलिस के आईटी यूनिट ने सांसद वेरोनिक लेगोविन के मोबाइल फोन की कल जांच की। ये कार्रवाई 155 किलो गांजा आयात मामले के तहत की गई। ये प्रक्रिया करीब 3 घंटे तक चली। इस दौरान सांसद और उनके वकील मौजूद रहे। इससे पहले वेरोनिक लेगोविन से पिछले सप्ताह रोजिल के आजसू ने भी पूछताछ की थी। उन्होंने इस मामले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। फिलहाल इस मामले में 3 संदिग्ध पुलिस हिरासत में हैं, गुलशन गोविंद, रविंद्र चिमाजी और डैनियल जोजी ऑगस्ट। वही चौथे संदिग्ध मिथुन चुलन की पुलिस तलाश कर रही है। वो पहले से ही पुलिस के रिकॉर्ड में हैं। अतीत में उसे एफसीसी की इकोडिया मामले से जुड़ी जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उस समय जांचकर्ताओं को संदेह था कि उसने जॉन यूबिया सेलगिन उर्फ फोंकले के लिए बेनामी व्यक्ति के रूप में काम किया था। फोंकले फिलहाल रेनियन में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक मामले में हिरासत में हैं। कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल के अनुसार एम्सो में नए पशु चिकित्सकों की भर्ती की तैयारी चल रही है। इस संबंध में वेटरिनरी काउंसिल और मॉरिशस के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। सरकार सार्क देशों और मडागास्कर से योग्य पशु चिकित्सकों की भर्ती की संभावना पर भी गौर कर रही है। हालांकि इसके लिए उनकी योग्यता की मान्यता और पंजीकरण से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल ने एक वेटरिनरी स्कूल, एक बड़ा एनिमल शेल्टर और एक वेटरिनरी हॉस्पिटल स्थापित करने की योजना का भी उल्लेख किया है। ये परियोजना भारत की ओर से मिलने वाली लगभग 2 बिलियन रुपए की सहायता के तहत आती है। मंत्री और अरविंद बुलेल को सुनते हैं जिनसे बात की शैली निर्वन ने, विवरण अशिता रघु का।
0: हम लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहती हैं और उनकी मांगों की पूर्ति हेतु व जानवरों के वेलफेयर यानी हित को बढ़ावा देना चाहती हैं। वेटरिनरी सेवा के स्तर पर हमने वेटरिनरी काउंसिल से मांग की है कि वे क्वालिफाइड पशु चिकित्सकों की भर्ती करें। जैसे कि हम सादेक का एक सदस्य देश हैं, तो हम अन्य सदस्य देशों जिनमें मडागास्कर शामिल है, वहाँ के क्वालिफाइड पशु चिकित्सकों को मानते हैं और ला सकते हैं। सभी के पास संसाधन नहीं है कि इस क्षेत्र में पढ़ाई करें, इसलिए हमारे पास उन मान्यता प्राप्त वेटरिनरी स्कूलों की सूची भी है।
1: आज 20 अगस्त को लातूकेनिक स्थित नेल्सन मांडेला सेंटर में द फॉरगॉटन सेंट्स नामक प्रदर्शनी शुरू हो रही है। इसे सेशल्स के कलाकार इमानुएल डोफे ने प्रस्तुत किया है। दास व्यापार और उसके उन्मूलन की अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस के अवसर पर मंगलवार को एक राउंड टेबल बैठक का आयोजन किया गया था। केंद्र के निदेशक स्टेफान कागू के अनुसार दास प्रथा मॉरिशस की आबादी के गठन और उसकी पहचान के इतिहास का हिस्सा है। उनको सुनते हैं, विवरण अशिता रघु का।
0: आज हमें ये ज्ञात है कि एक गुलाम भी एक इंसान है, उसका अस्तित्व है, जहां उसकी एक जिंदगी थी, रिश्ते नाते थे, बच्चे थे, महिलाओं व बच्चों की भूमिका क्या थी, उनका रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी। ये सभी प्रश्न हमें ये सोचने पर विवश करते हैं कि गुलामी को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाए, यानी हमेशा की तरह हाथों व पैरों में जंजीरें होने के बजाय हमें उन्हें आज़ादी, किस्मत व स्वाभिमान का एक कारक और कारण के रूप में देखना चाहिए।
1: विदेशी स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अभूतपूर्व क्रशिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा की है। दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाने के बाद ये फैसला लिया गया। ट्रंप ने ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग कर

करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी देश ईरान को आर्थिक मदद या सहारा देगा उसे भी गंभीर वित्तीय परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप के अनुसार ईरान को आर्थिक मदद पहुंचाने वाले वित्तीय संस्थानों, कंपनियों और सरकारी संस्थाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। और सेंट्रल अफ्रीका में कैमरून की सीमा के पास एक सोने की खदान के ढह जाने से सबसे अधिक लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार ये हादसा मंगलवार को जाम्बोई गांव में हुआ। बताया जाता है कि कई भूमिगत सुरंगों के ढहने से ये हादसा हुआ। बचावकर्मी मलबे में फंसे लोगों और शव को निकालने में जुटे हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। मौसम की रिपोर्ट। मस्करिन्स के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले एंटीसाइक्लोन के कमज़ोर होने की वजह से हमारे इलाके पर हल्की हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि सुबह के वक्त मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर में भी धूप खिले रहेगी, सिवाय कि पश्चिम में जहां कुछ घरी के लिए बादल घिराएंगे। तापमान जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहेगा। तटवर्ती इलाकों में न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अस्थिर हवा चलेगी। प्रवाल रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं। आज के लिए सूर्योदय 6:28 पर हुआ, सूर्यास्त होगा 5:58 पर।

0: खबरों के अंत में सुर्खियां एक बार फिर से। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के बीच आज मुलाकात, जिसके बाद पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए सरकार से सरकार साझेदारी के तहत बहुप्रतीक्षित एमओयू का आदान प्रदान। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों की जांच के लिए जिम्मेदार आयोग आईपीसीसी से जुड़ने वाले दो नए सदस्यों ने इस आयोग से संबंधित कानून में संशोधन लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉरिशस और जिम्बाब्वे के बीच व्यापार सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में प्रयास जारी, इसी सिलसिले में लगाया गया एक बिजनेस फोरम। कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल के अनुसार एम्सो में नए पशु चिकित्सकों की भर्ती के वास्ते तैयारी जारी, इस संबंध में वेटरिनरी काउंसिल और मॉरिशस के साथ विचार विमर्श। और विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के खिलाफ अभूतपूर्व क्रशिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा की, दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाने के बाद लिया गया ये फैसला। 6:49 हो चुके हैं, ये बुलेटिन आप तक पहुंचाया जा रहा है फैजन के सहयोग से, जुड़े रहिए हमारे साथ, कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: NBC Play, NBC Radio.tv.
0: Notre-Dame de Fatima Road terminus triolemé 64 साल की 64-year-old श्रीमती आर्यवती धर्म सिंह पैदाइशी नामचरण जो सबीता से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सपहर 3 बजे इनके पति ज्ञानदेव धर्म सिंह के मकान नोत्रडाम डे फातिमा रोड टर्मिनस थ्रियोले से उठाकर दाह संस्कार के लिए टर्मिनस थ्रियोले की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। रेल रोड घोगुब में श्रीमती ईश्वरी भैरो पैदाइश नाम गंगा जो मानता से जानी जाती थी और 80 साल की थी 80 ईयर ओल्ड की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं आज दिन के सारे

12 बजे इनके बेटे श्री करण देव भैरू के मकान रॉयल रोड घोंगुप से उठाकर दाह संस्कार के लिए डाहुची की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30। अविनी बेतु काठबोन में 84 साल की 84-year-old कुमारी धनर लक्ष्मी मुटुसामी जो संगेरी से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके भाई श्री सेन मुटुसामी के मकान अविनी बेतु काठबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए कोडेगाव की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रोयालेन बेजिटोंबो में 51 साल की 51-year-old श्रीमती पार्वती जगदेव पैदाइश नाम रामधनी जो करुणा से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे इनकी सास श्रीमती माला जगदेव के मकान रोयालेन बेजिटोंबो से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुआमाशाओं की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। नंबर 19 शातोनफ स्ट्रीट बोबासे में 83 साल की 83-year-old श्री कमल कुमार ग्रंथ राय जो भाई कमल से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे इनके मकान नंबर 19 शातोनफ स्ट्रीट बोबासे से उठाकर दाह संस्कार के लिए कांवड़िये की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ 1:30 PM। गुटवायाल घोंगुब में 90 साल के 90-year-old श्री देवचन्नी राय जो बाल्मीक से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके बेटे हुनेश्वर निराय के मकान गुटवायाल घोंगुब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोंगुब की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फिनरल टुडे एट 1 PM। रिजर्वा रोड कॉन्फुखो में 66 साल के 66-year-old जनाब मारी लावाल डामन उजिया जो डरमन से जाने जाते थे इंतकाल कर गई हैं। जनाजा जो हैं इनकी बेगम अनिता सकुन नंदुल के मकान रिजर्वा रोड कॉन्फुखो से निकाल कर दाह संस्कार के लिए रिजर्वा रोड कॉन्फुखो की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रॉयल रोड लावांचिया में 73 साल की 73-year-old श्रीमती सितवंती गुंधारी पैदाइश नाम सुकालू जो मतिया से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11:30 बजे इनके बेटे विशाल गुंधारी के मकान रॉयल रोड लावांचिया से उठाकर दाह संस्कार के लिए लावांचिया की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। वालोगी रोड मुक्का में 74 साल के 74-year-old श्री दयानंद राधा जो दया से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके मकान वालोगी रोड मुक्का से उठाकर दाह संस्कार के लिए लाग्रिमों सैं पियर की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। रॉयल रोड पुटगेडो विलाज में 41 साल के 41-year-old श्री विकास रामजी दास जो विकास से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी पत्नी श्रीमती अभिलाषा रामजी दास के मकान रॉयल रोड पुटगेडो विलाज से उठाकर दाह संस्कार के लिए पितों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। और लडवा रोड पुटगेडो विलाज में 46 साल के 46-year-old श्री सोमदत्त मेपल जो बक्स से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है।
अर्थी आज दिन के

एक बेजुइन के मकान लाडुआरो दे पुर्टो विला से उठाकर दाह संस्कार के लिए बेलमो की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। शोकग्रस्त सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी हैं।

सही और अच्छी सोच रखेंगे तो जो होगा अच्छा ही होगा. टाइम टू से बाय बाय. 6:57 मुलाकात होगी बहुत जल्द. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे अहेड.

ओके कैसे हो आप? चलिए यहाँ पर हम और आप साथ रहेंगे 9 बजे तक एंड आई जस्ट होप यू डूइंग गुड दिस मॉर्निंग. आज थर्सडे है. यस फ्राइडे का ईव.

0: good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musti.
3: मॉर्निंग में कुसु कुसु करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। चलो भाई, मॉर्निंग में डांस करना बड़ा मजा आता है। मैं तो कहती हूँ कोई देखे ना देखे, आपको करना है डांस तो करो। बाय द वे, जो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट कि हम हैं आपके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। अगर कोई उनको सरप्राइज करना चाहता है तो नंबर आपको पता है

5491294 आप लोग आपके नाम और उनका फोन नंबर हमें भेज सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए चलिए समय हो गया है आगे बढ़ने का। एंड मैं आपको बता दूं कि अभी जितने भी लोग गाड़ी चला रहे हैं, रोड पर हैं, तो काफ़ी मौसम जो है बदलता रहता है। हमेशा अपने गाड़ी में आप अपने जो ज़रूरत सामान है उसको ज़रूर रखें, और छाता एक ऐसी चीज़ है जो बारिश में और धूप दोनों में काम आता है। तो हमारा जो मौसम है ना, समझ में नहीं आ रहा है, कभी धूप कभी बारिश, लेकिन हमेशा अपना छाता जो है आप अपने गाड़ी में रखिएगा, या अपना छोटा सा छाता जो है अपने बैग में रखिएगा, और साथ में लाइक कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। आजकल मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो पानी नहीं पी रहे। कहते हैं कि भाई सर्दी है ना तो हम पानी नहीं पी रहे। भाई अगर सर्दी है, आप ठंडा पानी नहीं पी सकते, तो गर्म पानी तो पी सकते हो। गर्म पानी पीने का भी बड़ा मज़ा आता है। अब जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, कहते हैं गर्म पानी पीने से काफ़ी असर होता है। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे कहूँगी कि लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से हम सरप्राइज करने के लिए एकदम रेडी हैं। अगर आप भी रेडी हैं तो आपको क्या करना है, आपको हमें उस इंसान का नाम भेजना है, उसका फ़ोन नंबर भेजना है जिनका आज बर्थडे है, और फिर लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से हम उनको करेंगे ट्रिंग ट्रिंग और करेंगे हेलो हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, ऐसा नहीं होता, अलग होता है, आप सुनोगे तो पता चलेगा। चलिए जल्दी करें, विदिता आपके साथ है आपके अपने मॉर्निंग बीट में।

0: जी हाँ दोस्तों, हमारी जो बर्थडे गर्ल हैं उनसे बात होते होते लाइन कट गई, लेकिन पता नहीं शायद वो हमारे साथ हैं। चलिए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं और उनको विश करते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाय वैदेही, गुड मॉर्निंग।
1: मॉर्निंग
0: वैदेही। डर गई वैदेही को मैंने फोन किया, मैंने उनको बोला होल्ड करो, उन्होंने फोन ही काट दिया। क्या हो गया बच्चा, डर गई आप?
1: नहीं, मुझे नहीं पता किसने कॉल किया है।
0: आपको नहीं पता किसने कॉल किया? आपको सब पता है किसने कॉल किया। अगर कॉल कर ही दिया है तो लीजिए, अब आपको कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना।

0: रेडियो मस्ती।
1: हैप्पी बर्थडे टू यू वेदे ही। एंड आई बिलीव कि कोई तो होगा मॉर्निंग में, जब आप उनको कॉल करोगे तो जाहिर सी बात है वो इंसान डर जाएगा, अरे कौन मॉर्निंग में फ़ोन कर रहा है, नाम ना पता, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। सो वेदे ही, दिस इज़ रेडियो मस्ती और मैं विदिता आपको अपनी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे विश कर रही हूँ। एंड साथ में लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से ये सरप्राइज़ आपको किया गया था। एंड मैं आपको बोलूँ, आपको मिल रहा है लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से एक वाउचर जो कि आपको कलेक्ट करना पड़ेगा या तो फिर आज या तो फिर कल। अपने आईडी कार्ड के साथ आपको आना पड़ेगा MPC एंड सुबह 9:30 और सुपर के 3:30 के बीच। वैसे वैदे ही आप रहती कहाँ पे हैं?
2: अमोगी।
1: ओके, तो आज प्लान क्या है, घर पे रहना है, कहाँ क्या करना है आज?
2: घर पे रहूंगी।
1: ओके, और मम्मी पापा ने आपको बहुत सारा प्यार भेजा है और आपको हैप्पी बर्थडे विश किया है।
2: थैंक यू सो मच।
1: ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अभी बच्चे अभी भी नींद में है, सो आप वापस जाके सो सकते हो। एंड एंजॉय योर डे। हैप्पी बर्थडे टू यू वैदेही। बाय बाय।
3: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो। मॉर्निंग बीट RM2 रेडियो।

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musty.
2: अरे वाह क्या बात है। चलिए जी, इसी के साथ अभी समय हो गया है हमारे गेम का। जी बिल्कुल, मैं जानती हूँ आप लोग इंतज़ार कर रहे थे और हाँ मैं जानती हूँ, बस पता चल जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम दो कदम बढ़ाते हैं, आप दो कदम बढ़ाना, चार कदम हो जाएंगे तो आगे चलते जाएंगे। और यहाँ आपके लिए हम लेकर आए हैं एक ऐसा इनाम, एक ऐसा गिफ्ट जिसे आप एंजॉय करने वाले हैं। यस, बस हम यही कहेंगे आपको कि जब आप आंखें बंद करके एक म्यूज़िकल जर्नी में जाते हैं जहां पर ऐसा गाना है, ऐसी मेमोरीज़ हैं, ऐसे प्यारे प्यारे गाने हैं जो आपके दिल को टच कर जाए। यस, और आवाज़ हो द टाइमलेस वॉइस ऑफ शान की। नाउ इमेजिन, आप एक कॉन्सर्ट के लिए जा रहे हो, बैठे और वो आपके सामने गाना गा रहा है। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ RM2 रेडियो मस्ती इज गिविंग यू द चांस टू एक्सपीरियंस द मैजिक लाइव। यस, प्ले विद RM2 रेडियो मस्ती एंड स्टैंड अ चांस टू विन अ प्लैटिनम टिकट टू अस इज द स्पेक्टेकुलर शान लाइव कॉन्सर्ट। तो वन वॉइस वन स्टेज वन अनफॉर्गेटेबल नाइट एट SBICC ऑन 5th ऑफ सितंबर 2026 एज फ्रॉम 8 PM, प्राउडली ऑर्गेनाइज्ड बाय टिकट box.mu। अब आपके लिए होगा सवाल, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से मुझे जवाब दीजिएगा, क्या पता कि आज आपको ये मौका मिल जाए इनाम जीतने का। तो चलिए इसी के साथ हम जो अगला सवाल है आपके लिए लेकर आए हैं। सो यू हैव टू टेल मी, यस यू हैव टू टेल मी, वेयर कैन यू बाय टिकट्स फॉर शान लाइव इन मॉरिशस, वेयर कैन यू बाय टिकट्स फॉर शान लाइव इन मॉरिशस। चलिए, तो आपको मुझे बताना है जवाब क्या है। इज इट ए www.ticketbox.mu, इज इट बी ticketbox.mu kiosk at Tribeca Mall, is it C, both A and B? तो आप जल्दी से मुझे जवाब दीजिए on 549 and 1294 पूरे नाम और पते के साथ।

ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर हमने आपसे सवाल किया था एंड चलो हम रेडी हो गए हैं अपने विनर का नाम अनाउंस करने के लिए। बाप रे बाप, इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इतने सारे लोगों ने, थैंक यू सो मच गाइस। मैसेजेस अभी भी आ रहे हैं लेकिन चलो टाइम आउट हो गया एंड यहाँ पर अब समय हो गया है कि हम जाने कि यहाँ किसने सही

जवाब दिया है एंड कौन बनी है विनर. तो हमने आपसे सवाल किया था, हमने आपसे पूछा था वेयर कैन यू बाय टिकट्स फॉर शान लाइव इन मॉरिशस, और आपको मुझे जवाब देना था इज इट ए www.ticketbox.mu एंड साथ में बी ticketbox.mu क्योस अत्रिबिका मॉल, और इज इट बोथ ए एंड बी. तो यहाँ पर सही जवाब है आंसर इज सी बोथ ए एंड बी. आप खरीद सकते हैं टिकट एंड लेट मी टेल यू कि यहाँ आपको मौका मिला है एक टिकट जीतने का, जो कि मेरे ख्याल से आपके लिए एक इससे ज़्यादा बड़ा गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता. वे यू कैन एन्जॉय द म्यूज़िक एंड साथ में शान का ना एक अलग वाइब होता है जब वो स्टेज पे परफॉर्म करता है ना, तो एक मैजिक सा होता है. तो चलिए यहाँ पर शान जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड प्लेबैक सिंगर्स ऑफ इंडिया एंड ये जब गाना गाती है ना उनकी वॉइस बहुत ही सोलफुल वर्सेटाइल वॉइस है उनकी. एंड 1990 से बस उनका करियर कुछ इस तरह से उसने रुख बदला कि उनको आप कोई भी गाना गवा दो, चाहे वो रोमांटिक हो, मेलोडिक हो, या कुछ गाने होते हैं जैसे फील गुड सॉन्ग्स होते हैं, जैसे भी आपने सुना चार कदम, यू लव्ड इट राइट. चलिए तो ओवर द इयर्स शान हैज डिलीवर्ड न्यूमरस मेमोरेबल हिट अक्रॉस हिंदी सिनेमा एंड इंडियन पॉप म्यूजिक, अर्निंग अ स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग अक्रॉस जनरेशंस. आज की जनरेशन भी उनको बहुत पसंद करते हैं. वार्म वोकल स्टाइल है और उनका जो स्टेज प्रेजेंस है बहुत ही एफर्टलेस होता है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, उनका प्रेजेंस ही काफ़ी होता है. एंड उनके पास है द एबिलिटी टू कनेक्ट इमोशनली विद द ऑडियंस एंड टू मेक पीपल यू नो उनको खुश करना, और झूम उठते हैं सारे. चलिए तो आप एंजॉय कर सकते हैं दिस कैरिमेटिक एनर्जी एंड द वॉइस एंड द टाइमलेस मेलोडीज ऑफ शान लाइव ऑन SBICC स्टेज ऑन 5th ऑफ सितंबर 2026 एज फ्रॉम 8 PM. अब हमारे विनर क्या कमाल किया है आपने, चलिए जानते हैं कि विनर कौन है. एंड विनर है ये है अविष्कार उबिलक. कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. और आपको मैं बताऊं, आपको मिल रहा है ये प्लैटिनम टिकट जिसके चलते आप जाकर ये जो कॉन्सर्ट है इसका पूरा मजा ले सकते हैं ऑन 5th of September 2026. तो मैं आपको बताऊं कि थोड़ी देर में हम समाचार की ओर बढ़ने जा रहे हैं एंड हमारे जो विनर हैं आपको थोड़ी देर में हमारी जो प्रोडक्शन असिस्टेंट हैं वो कॉल करेंगी और आपको बताएंगी कि आपको कैसे आकर यहाँ पर अपना टिकट ले जाना पड़ेगा. तो चलिए हम स्पोर्ट्स की ओर बढ़ते हैं थोड़ी देर में एंड कंग्रेचुलेशंस आपको.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: टाइम हो गया है थोड़ा सा अभी वार्म अप करने का और मिलने का हमारे दोस्त अरविंद के साथ. चले जानते हैं क्या खबरें लेकर आए हैं. गुड मॉर्निंग अरविंद.
4: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. यूरोपियन चैंपियंस लीग के प्ले ऑफ मैच में सेल्टिक ने 3-0 से LAS के टीम को पछाड़ा, मतलब एक कदम ग्रुप स्टेज में. अन्य मैचों में अपोएल बेर्शेवा 2-1, NEC 1, बोडोग्लिन 3, स्लोवान ब्रातिस्लावा 1, सेलिए 1. स्पेन के लालीगा में एथलेटिको मैड्रिड ने 2-0 से मालागा को हराया. आज UEFA यूरोपा लीग और UEFA कॉन्फ्रेंस लीग के प्ले ऑफ के मैच खेले जाएंगे. स्पेन के लालीगा में रायो वालेकानो का मुकाबला अलावेज से होगा. कल से प्रीमियर लीग सीजन 2026-2027 शुरू हो रहा है. पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन आर्सेनल और प्रीमियर लीग की नई नवेली दुल्हन कोवेंट्री सिटी के बीच टाइटल डिफेंस कल से शुरू. प्रीमियर लीग चैंपियन वर्सेस लीग चैंपियनशिप का चैंपियन. आर्सेनल कल खेलेगा पर टीम को और दमदार बनाने के लिए शॉपिंग जारी है. एस्टन विला के डिफेंडर एज्री कोंसा के लिए 50 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग देने पर मंजूरी हो चुकी है, अब उसे बस साइन करना है. मैनचेस्टर यूनाइटेड तीसरा मिडफील्ड खिलाड़ी साइन करना चाहता है. एंड्रे सांतोस और योगी चेलेमांस के बाद अब ब्राइटन

0: बालेबा को साइन करना चाहते हैं। बालेबा के लिए 60 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का ऑफर भेजा गया है, पर ब्राइटन दाम बढ़ाना चाहेगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड की नजर रोमा के मानु कोने पर भी है, पर सिटी भी कोने के पीछे है। लिवरपूल का मिडफील्डर कर्टिस जोन्स इंटर मिलान की ओर, खबर है इंटर मिलान 30 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर उसे साइन करने के करीब है। जॉन स्टोन्स और स्पेंस के बाद जोन्स इंग्लैंड का तीसरा खिलाड़ी होगा इंटर मिलान में। क्रिकेट, भारतीय टीम ने कल श्रीलंका को पहले टेस्ट मैच में हराया, 165 रनों की जीत, 165 रन विन। श्रीलंका की दूसरी इनिंग्स में मानव सुतर 6 विकेट ले पाया, मैन ऑफ द मैच बना देवदत्त पदिक्कल। इंग्लैंड का मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा है, पहले टेस्ट मैच में पहले दिन ही इंग्लैंड ने पाकिस्तान को केवल 171 रनों में ऑल आउट किया। इंग्लैंड की टीम बैटिंग कर रही है 112 रन बनाकर 2 विकेट के नुकसान पर। साइकिलिंग, टूर ऑफ ब्रिटेन वीमेन में कल लोरेना वेबेस ने पहला स्टेज जीता, मॉरिशस से किम्बर्ली लेकू डेब्यू किना 22वें स्थान पर आई, 22nd place, पर ओवरऑल रैंकिंग में वो 6th स्थान पे हैं, 6th place, लीडर वेबेस से केवल 8 सेकंड पीछे। बीच वोले में हमारी लड़कियों ने दूसरी जीत हासिल की, इजिप्ट में लग रही अफ्रीकी चैंपियनशिप में लिजाबोन और जुआनिता लातू ने इस बार साउथ अफ्रीका की जोड़ी को हराया, आज इनका मुकाबला केन्या से होगा। सो कहते हैं ना जामे 203, ऑल द बेस्ट हमारी टीम के लिए, और आपको कहेंगे हैव अ वंडरफुल डे अहेड, टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू अरविंद, हैव अ गुड डे।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर, द फ्लो एक्सपर्ट।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: आजकल के कैसे कैसे गाने हैं, बेबी तुझे पाप लेके गई, ये भी कोई गाना है भाई, ऐसे कोई गाना गाता है। चलो कोई नहीं जी, गाना था तो गाना था। अभी क्या करना है हमें, अभी हमें गेम लेकर आना है आपके लिए, एंड हमारे विनर को हम आज खुश करेंगे और

0: उनको ले जाएंगे एक ऐसी जगह जहाँ पे उनके चेहरे पे ग्लो होगा, शाइन करेंगे, ग्लो करेंगे। यस, 40 मिनट हाइड्राग्रो फेशियल एट प्राणा स्किन एंड लेजर क्लिनिक, ये होगा आपके लिए गिफ्ट। तो एंजॉय करें द डीप क्लेंजिंग, जेंटल एक्सफोलिएशन, हाइड्रेशन सीरम इन्फ्यूजन एंड हाइड्राग्लो मास्क, ऑल डिजाइन टू लीव योर स्किन फीलिंग रिफ्रेश्ड, स्मूथ एंड ब्यूटिफुली रेडियंट। योर ग्लो स्टार्ट्स एट प्राणा। चलो भाई, इन्होंने तो हमारे प्राण हर लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट स्टाइल मार लिया अभी, क्वेश्चन तो पूछ ले। हाँ जी, क्वेश्चन पूछते हैं अभी आपके लिए। क्वेश्चन है, 2018 में जानवी और ईशान खत्तर ने अपना डेब्यू किया था। हाँ मुझे पता है फिल्म का नाम है धड़क, चीखने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है। चलो अब मुझे ये बताइए कि ये जो फिल्म है धड़क, ये एक मराठी मूवी का रीमेक है। जी हाँ, ये एक मराठी मूवी का रीमेक है जो आई थी 2016 में। अब आपको मुझे उस मूवी का नाम बताना है, जो मराठी मूवी थी ना उसका नाम बताना है। 5499124। बड़े होशियार समझ रहे थे खुद को, देखती हूँ कितने लोग अच्छे अच्छे जवाब भेजते हैं मुझे 5499124 पे। तो जल्दी करो, अपने जवाब भेजो और ले जाओ ये 40 मिनट हाइड्रा ग्लो फेशियल एट प्राणा स्किन एंड लेजर क्लिनिक।
1: RM2 रेडियो मस्ती, मोमेंट्स दैट मैटर विद सीकम।
2: सबसे जोली परियोजना अक्सर शुरू होएला एगो निर्णय से। नवा गाड़ी लेके अपन कारोबार के आगे बढ़ाए के, अपन भविष्य के मजबूत बनाए के, या फिर आज ऐसन जीवन चुने के जोन पर्यावरण यानी लॉन्विहोन म खातिर बेहतर होए। सिकोम तोहर सब परियोजना के आगे बढ़ाई में साथ दिवेला। हमनी दिनी से देवल जाए होला होम लोन आर लीसिंग के कई गो उपसियों बा, जोन तोहरा पर्यावरण यानी लॉन्विहोन म पर कमती असर डाले में तोहरा प्रोत्साहित करेला, जेकर से आई होला पीढ़ी खातिर भी एगो निमन आर बेहतर काल बनाए सकबा। हमनी के वित्तीय समाधान तोहर सपना, तोहर जीवन की सब फैसला आर उ सब पल में तोहर संगी बा, जोन तोहर खातिर सबसे जस्ती मायना रखेला। सिकोम एगो ऐसन साथी है जेकर लगे हर जरूरत के समाधान है। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकोम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
1: It was moments that matter with Sikom.
3: Une envie de McDonald's là tout de suite, mais pas envie de bouger. Pas gagné tracas. Fais appel à McDelivery. Ton burger préféré, tes frites bien chaudes et ta boisson fraîche livrée directement chez toi grâce à Deliveroo et Odamanzé. À midi, le soir, n'importe quand l'estomac l'a grogné, mais commandez, nous amenez. Et en ce moment, profite de la livraison gratuite. Plus d'infos sur notre site web. McDelivery, pas bouger, nous vini.
4: McDonald's, ba-da-ba-ba-ba, I'm loving it.
5: Tech Mag, powered by 365. Bien plus encore.
6: Have you ever wondered how Netflix or Prime Video seem to know exactly what you want to watch next? Streaming platforms are increasingly using artificial intelligence to personalize recommendations. Instead of simply suggesting what's popular, AI analyzes your viewing habits, favorite genres, and even how long you watch certain programs to recommend content tailored specifically to you. The aim is simple: spend less time searching and more time enjoying your favorite shows and films. As artificial intelligence continues to improve, your streaming platform could soon understand your viewing preferences almost as well as you do.
5: Tech Mag was powered by
7: 365. Bien plus encore.
8: Sean, live in Mauritius. Saturday, 5th of September at SBICC Pai. Join us for the biggest Sean concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists. Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 214-6464. Another great event brought to you by Gravity Zero. Ticketbox.mu, your one-stop shop for the best events, hotels and flights in Mauritius.
1: RM2
5: Radio Mustang.

0: चलिए यहाँ पर हमने आपसे सवाल किया था और सही जवाब हमें मिल चुका है. ये है निखिल फ्रॉम सेंट्रल यदुत में, जिन्होंने हमें सही जवाब दिया है. द राइट आंसर इज सैराट. चलिए हम आपको बताएं, आपको मिल रहा है ये 40 मिनट हाइड्राग्लोफेशियल प्राना स्किन लेजर क्लिनिक की तरफ से, और आपको आपका ये जो वाउचर है पोस्ट कर दिया जाएगा. चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं 8 बजे के समाचारों की ओर.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
2: Radio Musti.
3: North, South,
2: 103.5.
3: East, West,
2: 96.4.
3: Center,
2: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Phajir ke 8 baje jalwa pesh ba Bhojpuri samachar. सब श्रोतालों के नमस्ते. भोजपुरी समाचार में तुहर स्वागत बाते. मॉरिशस और जिम्बाब्वे अपन व्यापार आदान प्रदान के नवा गति देखो जता. जिम्बाब्वे के 30 से जस्ती प्रतिनिधि स्थानीय बाजार के समझे के और नवा कारोबारी के अवसर तलाशी खातिर मॉरिशस में हवन जा. दोनों देशों के बीच व्यापार अभी भी सीमित बाते. 2025 में जिम्बाब्वे दिने मॉरिशस के निर्यात लगभग 4,54,000 अमेरिकी डॉलर के रहल. दोनों देश के चैम्बर्स और कॉमर्स के बीच काल एगो बिजनेस फोरम बजी हस्ताक्षर करल गल एमओयू के उद्देश्य नवा साझेदारी के रास्ता खोले के है. खाद्य सुरक्षा भी उप्रमुख क्षेत्र में शामिल है, जहां मॉरिशस और जिम्बाब्वे अपन सहयोग के मजबूत करे खोजत हवन सा. भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम संगे मुलाकात करियन, जेकर बाद

खाद पेट्रोलियम उत्पाद की आपूर्ति खातिर सरकार से सरकार साझेदारी के तहत एगो लंबा समय से प्रतीक्षित एमओयू के आदान प्रदान करल जाए। एकर बाद प्रेस संबोधन भी हुए। पुलिस कैनाबिस के आयात के कथित साजिश के मामला में एगो संदिग्ध की तलाश करता। संदिग्ध के नाम शान कुमार चुलन है, जिनकरा लोग मिथुन से भी जानन जा। उ लेमोन के रहे होला हुआन। जे कोई के पास ओकर बारे में कोनो जानकारी रही, ओकरा पुलिस से संपर्क करे के चाही। पुलिस याद दिलावता कि क्रिमिनल कोड के धारा 172 के तहत कोनो फरार व्यक्ति के पनाह दे के एगो अपराध है। गुलशन गोविंद के काल बाबू अदालत में पेश करल गल कैनाबिस के खेती और मिथाडोन रखे के आरोप के संबंध में उनकर जमानत पर रिहाई के अर्जी पर बहस करल गल। पुलिस संदिग्ध के जमानत के मांग के विरोध करलक। मामला के आवत सुनवाई लेंदी 24 अगस्त के करल जाए। पुलिस के आईटी यूनिट सांसद वेरोनिक ले गोविंद के मोबाइल फोन के काल जांच करलक। ई कार्रवाई 155 किलो गांजा आयात के मामला के तहत करल गल। ई प्रक्रिया करीब 3 घंटा तक चलल। ई दौरान सांसद और वकील उनकर वकील मौजूद रहल। एकर से अक्ते वेरोनिक ले गोविंद गल सप्ताह रोजिल के आदसू में भी पूछताछ करल गल रहल। उनकर से ई मामला में कोनो भी तरह के संलग्न हो से इनकार कर ले हवन। फिलहाल ई मामला में 3 गो संदिग्ध पुलिस हिरासत में बाते। गुलशन गोविंद, रविंद्र चिमाजी और वी डैनियल जोजे ओगिस्त हो जे चौथा संदिग्ध है, जिनके मिथुन चुलन हवन के तलाश जारी बा। वो अक्ते से ही पुलिस के रिकॉर्ड में हवन। अतीत में उनकरा एफसीसी के एकोडिया मामला से जुड़ल जांच के दौरान गिरफ्तार करल गल रहल। उस समय जांचकर्ता के संदेह रहल कि वो जॉन यूबेर सेल्किन उर्फ फ्रैंकलिन के खातिर बेनामी व्यक्ति के रूप में काम कर ले रहन। फ्रैंकलिन फिलहाल रूनियन में मादक द्रव्य के तस्करी से जुड़ल एगो मामला में हिरासत में बाते। इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंस कमीशन यानी कि आईपीसीसी के अध्यक्ष पद पर सतीश फोगू के नियुक्ति के बाद आयोग में न्यायिक क्षेत्र के 2 गुना पेशेवर शामिल होल हवंसा रेणुका ब्रिजमोहन और इमामाद उजिया काल दोपहर के स्टेट हाउस में राष्ट्रपति धर्म गोकुल के सामने पद की शपथ ले लन जा। उ लोग ई आयोग से संबंधित कानून में संशोधन आने की आवश्यकता पर जोर दिलन। आईपीसीसी के मुख्य दायित्व पुलिस अधिकारी के खिलाफ दर्ज शिकायत के जांच करेगी है। कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल के अनुसार एम्सो में नवा पशु चिकित्सक के भर्ती खातिर तैयारी चलता। इस संबंध में वेटरिनरी काउंसिल और मॉरिशस संगे विचार विमर्श करल जानबा। सरकार सादेक देशन और मडागास्कर से योग्य पशु चिकित्सक के भर्ती के संभावना पर विचार करता। हालांकि इकर खातिर उलोग के योग्यता के मान्यता और पंजीकरण से जुड़ल प्रक्रिया पूरी करे के चाहिए। मंत्री अरविंद बुलेल एगो वेटरिनरी स्कूल, एगो बड़ा एनिमल शेल्टर और एगो वेटरिनरी हॉस्पिटल स्थापित करे के योजना के भी उल्लेख करलन। ई परियोजना भारत देने से मिली होला लगभग 2 बिलियन रुपया की सहायता के तहत आवेला। और दूसर देश के समाचार में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ अभूतपूर्व क्रशिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन शुरू करे के घोषणा कर ले बाद दोनों देशों के बीच कोनो समझौता पर सहमति नहीं होला के बाद ये फैसला लेवल गल बा। ट्रंप ईरान के आर्थिक रूप से अलग थलग करे खातिर बड़ा पैमाना पर कार्रवाई के चेतावनी दे ले बा। वो ये भी कहलन कि जो भी देश ईरान के आर्थिक मदद या सहारा दे ओकरा गंभीर वित्तीय परिणाम भुगते के पड़ी। ट्रंप के अनुसार ईरान के आर्थिक मदद पहुँचाई होला वित्तीय संस्थान, कंपनी या सरकारी संस्था के खिलाफ भी कार्रवाई करल जा सकी। सेंट्रल अफ्रीका में कामरून के सीमा के पास एगो सोना के खदान के ढह जला से 100 से जस्ती लोगन की मौत हो गल बा। स्थानीय सूत्र के अनुसार यह हादसा मंगर के जाम्बोई गांव में होल। बतावल जाता कि कई गो भूमिगत सुरंग के ढहला से यह हादसा होल। बचाव कर्मी मलबा में फंसल लोगन
और शव निकाली में जुटल हवन जा मृतक के संख्या बढ़े के

0: आशंका बाती। और श्रीलंका में गो सामूहिक कब्र के खुदाई के दौरान 582 गो कंकाल बरामद कर गलबाज कर में लड़का और शिशु भी शामिल रहल बाती। स्थल देश के गृह युद्ध बजी तमिल नागरिक के सेना द्वारा हत्या करल जाए के आरोप से भी जुड़ल बाते। मामला के जांच में करीब 30 बरिस के देरी होल बा। एक संगे भोजपुरी समाचार समाप्त भेल। धन्यवाद।
1: Morning beat.
2: Oh God, one more remix.
1: A good beat for your morning show.
3: RM2, Radio Musty in the mix.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: जो सफर तो सुहाना तभी बनता है जब हम सफर साथ हो और हम सफर प्यारा हो और ऐसे प्यारे प्यारे गाने हो तो हम सफर की क्या जरूरत। जानती हो अकेले बैठे हो गाड़ी में और सोच रहे हो कि क्या बातें कर रही है।

0: लड़की, चलो हमारा तो काम ही बातें करना। 8:11 हुए हैं, आज है 20 अगस्त, जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको हैप्पी बर्थडे, और नहीं तो आज का दिन स्पेशल खास हो सकता है अगर आप उसको बनाना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़कर, हमारे गाने सुनकर, अपना मूड बनाकर चलिए। मूड का तो ठीक है, लेकिन मौसम कैसा रहेगा करुणा से जान ले।
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स।

0: ही केवल पश्चिम में कुछ घरी के लिए बादल घिर आएंगे। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की और अस्थिर हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा, लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं। आज के लिए सूर्योदय 6:28 पर, सूर्यास्त होगा 5:58 पर।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
3: Avec le froid, c'est le moment de prendre soin de soi. Du 7 au 23 août, Winners vous invite à faire le plein de vitamines. Profitez de nos offres sur les fruits et légumes frais, les jus, les produits sains et venez savourer nos dégustations en magasin. Les 200 ml de Cod Liver Oil Scott's Emulsion Orange Flavor à 199,95 € et la boîte de 700 g de Régilé écrémé Vitamilk à 499,95 €. Faites le plein de fraîcheur, de saveur et de vitalité pour affronter l'hiver. Venez vivre l'expérience chez Winners.
4: On est
1: RM2
2: Radio Musti.
5: सिकम के लोन्स और लीसिंग सुविधा के माध्यम से आप सकबा अपन सब प्रोजेक्ट के बिना कोनो चिंता के पूरा करे। सिकम के ग्रीन लोन जुनबा वो तोहरा एगो ऐसा जीवन शैली अपनाई खातिर वित्तीय सहायता देवेला जो जस्सी इकोलॉजी खा। इसे हमने के जोली टापू के भी फायदा होई। जस्सी जानकारी खातिर आज ही सिकम से संपर्क कर या हमने की वेबसाइट sikkim.mu पर जाइ। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
6: Sikkim Group, a lifetime commitment.
7: Et KFC sur Ultimate Smoky Zingola.
8: Et pas gay, prends ça.
9: Ah bon? Pas gay, prends?
8: Non, pas gay, prends ça, man.
7: T'as gay défilé que sur les cheese, sur tomate, sur fromage, et que sur ban la sauce smoky mayo, là-haut, milieu, en bas, mais déjà où ça? Pas gay, prends.
8: Eh ben... L'in promo Ultimate Smoky Zinger in Ali.
10: Dare the Ultimate Smoky Zinger avec tout ce que vous aimez à 345 roupies. Attention, ça fera des jaloux.
1: KSC RM2
2: Radio Musti. RM2
1: Radio Musti.
2: Feel the Musti.
11: सुबह के 8:15 हो रहे हैं। यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती विदिता के साथ। ये है आपका मॉर्निंग बीट। गुड मॉर्निंग।

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग मेरे मस्त मस्त दोस्त, कैसे हो, कहाँ पहुँचे अभी इस टाइम पे? तो आप लोग ट्रैफिक में हो क्या? अच्छा ठीक है, नंबर जानते हो 5491294 भेज तो सकते हो कि कहाँ पे हो। और मॉर्निंग में ये जो वाइब चलता है ना, बड़ा अच्छा होता है। चलो आप चाय कॉफ़ी के साथ अगर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो, स्पेशली हमारी लेडीज़, उनको कहूँगी गुड मॉर्निंग। जैसे मैं कहती हूँ ना, वो चुपचाप चाय लेकर बैठ जाती, कहती है फिर से डांटेगी। अच्छा है ना, कोई तो होना चाहिए ना डांटने वाला। ये डांट नहीं होता है, प्यार होता है। मैंने हमेशा कहा है कि लाइफ में आपको खुद को इतना वक्त देना चाहिए जहाँ पर आप थोड़ा सुकून के साथ अपना नाश्ता कर सके। वो सुकून बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, सुबह का टाइम है, आप लोग नाश्ता कर रहे हैं या तो फिर आप लोग अभी ड्राइव कर रहे हैं या तो फिर कुछ लोग अभी काम पर पहुंच जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि रोज लोग होते हैं काम पर 15-20 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, आराम से बैठते हैं, चाय कॉफी लेते हैं। तो चलो, अगर आप लोग घर से निकल चुके हैं, प्लीज रिमेंबर रोड पर आपको सेफ रहना है और गाड़ी आराम से चलाना है, सीट बेल्ट लगाना मत भूलना। और जो लोग मोटरसाइकिल पर निकलते हैं, प्लीज अपना हेलमेट मत भूलना। और हाँ, ड्राइविंग करते वक्त फ़ोन को थोड़ा सा इग्नोर मोड पे रखना, फ़ोन को ज़्यादा ध्यान देना, इतना भी अटेंशन देना ज़रूरी नहीं होता। जब आप ड्राइव कर रहे हैं, आप हम पे ड्राइव जब कर रहे हो ना ड्राइव, तो आप हम पे थोड़ा सा अटेंशन देना, आप हमारे गीतों पे थोड़ा सा फोकस करना। सच कहते हो, इस गाने के साथ ना आपका मूड एकदम बदल जाएगा। जैसे कि ये ग्रीन ग्रीन पत्ते कौन से थे,

0: कलंदर मस्त कलंदर, मूड तो ठीक हो गया आपका और दिल क्या कह रहा है? Well, you are thinking something अंदर अंदर. चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर समय हो गया है, एक बार फिर मिलते हैं हम. अगर आपने स्पोर्ट्स मिस कर दिया तो हमारे दोस्त अरविंद आ गए हैं. चलिए एक बार फिर जानते हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है.
1: स्पोर्ट्स न्यूज
2: रेडियो मस्ती इन द मिक्स.
3: Good morning, आपको. Good morning, RM2 listeners. The latest from the sports world. European Champions League के प्लेऑफ मैच में सेल्टिक ने 3-0 से LAS के टीम को पछाड़ा, मतलब एक कदम ग्रुप स्टेज में. अन्य मैचों में अपोएल बेर्शेवा 2-1, NEC 1, बोडोग्लिंट 3, स्लोवान ब्रातिस्लावा 1, सेलिए 1. स्पेन के लालीगा में एटलेटिको मैड्रिड ने 2-0 से मालागा को हराया. आज UEFA यूरोपा लीग और UEFA कॉन्फ्रेंस लीग के प्ले ऑफ के मैच खेले जाएंगे.

0: स्पेन के लालीगा में रायो वालिकानो का मुकाबला अलावेज से होगा। कल से प्रीमियर लीग सीजन 2026-2027 शुरू हो रहा है। पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन आर्सेनल और प्रीमियर लीग की नई नवेली दुल्हन कोवेंट्री सिटी के बीच टाइटल डिफेंस कल से शुरू। प्रीमियर लीग चैंपियन वर्सेस लीग चैंपियनशिप का चैंपियन आर्सेनल कल खेलेगा, पर टीम को और दमदार बनाने के लिए शॉपिंग जारी है। एस्टन विला के डिफेंडर एज्री कोनसा के लिए 50 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग देने पर मंजूरी हो चुकी है, अब उसे बस साइन करना है। मैनचेस्टर यूनाइटेड तीसरा मिडफील्ड खिलाड़ी साइन करना चाहता है। आंद्रे सांतोस और योगी चेलेमांस के बाद अब ब्राइटन से बालेबा को साइन करना चाहते हैं। बालेबा के लिए 60 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का ऑफर भेजा गया है, पर ब्राइटन दाम बढ़ाना चाहेगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड की नजर रोमा के मानु कोने पर भी है, पर सिटी भी कोने के पीछे है। लिवरपूल का मिडफील्डर कर्टिस जोन्स इंटर मिलान की ओर, खबर है इंटर मिलान 30 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर उसे साइन करने के करीब है। जॉन स्टोन्स और स्पेंस के बाद जोन्स इंग्लैंड का तीसरा खिलाड़ी होगा इंटर मिलान में। क्रिकेट, भारतीय टीम ने कल श्रीलंका को पहले टेस्ट मैच में हराया, 165 रनों की जीत, 165 रन विन। श्रीलंका की दूसरी इनिंग्स में मानव सुतर 6 विकेट ले पाया, मैन ऑफ द मैच बना देवदत्त पदिक्कल। इंग्लैंड का मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा है। पहले टेस्ट मैच में पहले दिन ही इंग्लैंड ने पाकिस्तान को केवल 171 रनों में ऑल आउट किया। इंग्लैंड की टीम बैटिंग कर रही है 112 रन बनाकर 2 विकेट के नुकसान पर। साइकिलिंग, टूर ऑफ ब्रिटेन वीमेन में कल लोरेना वेबेस ने पहला स्टेज जीता। मॉरिशस से किम्बर्ली लेकू देबियुपियेना 22वें स्थान पर आई, 22nd प्लेस पर। ओवरऑल रैंकिंग में वो 6th स्थान पे हैं, 6th प्लेस लीडर वेबेस से केवल 8 सेकंड पीछे। बीच वोले में हमारी लड़कियों ने दूसरी जीत हासिल की। इजिप्ट में लग रही अफ्रीकी चैंपियनशिप में लिजाबोन और जुआनिता लातू ने इस बार साउथ अफ्रीका की जोड़ी को हराया। आज इनका मुकाबला केन्या से होगा। सो कहते हैं ना, जामे 203, ऑल द बेस्ट हमारी टीम के लिए, और आपको कहेंगे हैव अ वंडरफुल डे अहेड, टेक केयर, बाय बाय।
1: मॉर्निंग बीट,
2: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स,
1: a good beat for your morning show.
3: RM2 Radio Musty in the mix.

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: दोस्तों कहते हैं कोई भी रिश्ता हो उसमें लॉयल्टी बहुत ज़रूरी होता है। लॉयल्टी का मतलब सिर्फ किसी के साथ अच्छे वक्त में खड़े रहना नहीं है, लॉयल्टी का असली मतलब है जब वक्त बदल जाए तब भी दिल ना बदलना। लॉयल्टी एक ब्यूटीफुल क्वालिटी है क्योंकि ये वर्ड से नहीं एक्शन से प्रूव होती है। आजकल लोग इजीली कनेक्ट होते हैं और इजीली डिसकनेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन जो इंसान आपके सक्सेस में जेन्युइनली खुश हो, आपके डिफ़िकल्ट टाइम में बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ खड़ा रहे और आपकी एब्सेंस में भी आपकी रिस्पेक्ट मेंटेन करे, दैट पर्सन इज ट्रूली लॉयल। लॉयल्टी का मतलब ब्लाइंड सपोर्ट भी नहीं है। कभी कभी लॉयल होना मीन्स आपको वो सच बताना जो शायद आप सुनना नहीं चाहते, और सबसे इम्पॉर्टेंट, लॉयल्टी दूसरों से एक्सपेक्ट करने से पहले खुद लॉयल बनना सीखिए। अपने फ्रेंड्स के लिए लॉयल रहिए, अपने फैमिली के लिए लॉयल रहिए और अपने प्रॉमिसेस के लिए लॉयल रहिए, और सबसे ज़्यादा अपने वैल्यूज और अपने ड्रीम्स के लिए लॉयल रहिए। बिकॉज At the end of the day, people may forget what you said, but they will never forget how consistently you stood by them. Isi ke saath, have a good day.
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
0: Petite, on me disait ce que je devais faire. Mais moi, je voulais juste faire du sport.
1: Milo, libère ta force.
0: Parce que j'aime me surpasser, aller plus loin qu'hier.
1: Milo, libère ta force.
0: La beauté du sport, c'est qu'il ne regarde pas qui je suis, mais me permet de devenir ce que je souhaite. Je suis déterminée, passionnée. Je tombe, je me relève et je vais de l'avant. C'est pourquoi j'aime le sport.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: अजय हम तो कहते हैं जहाँ खुशियाँ मिली वहाँ खुशियाँ बटोर लो, और ज़िंदगी में रखा है क्या है, एक छोटी सी स्माइल किस तरह से इंसान की पूरी ज़िंदगी लाइक उनकी पूरा दिन बदल देता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसीलिए जिससे भी मिलो हंस के मिलो, कोई कुछ करता है तो थैंक यू ज़रूर बोलो, और बस बी ग्रेटफुल इन योर लाइफ। आपके हाथ में जो भी है, जो चला गया उसको भूल जा, जो है उसकी कदर करो, और वैसे ही स्माइल करते रहो, और अपने आप से सबसे पहले स्माइल करो। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मॉर्निंग में जब आप उठो सबसे पहले अपने आप को आईने में देखो एंड स्माइल करो, स्माइल एट योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ द स्माइल दैट यू नीड एक्चुअली, तो फिर आपको दूसरों से स्माइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जहां भी जाओगे उसी स्माइल के साथ जाओगे, बिकॉज यू नो हाउ टू कीप योरसेल्फ हैप्पी। तो चलिए इसी के साथ जो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आप चाहे तो हमें अपने मैसेज भेज सकते हैं ऑन 5491294। गुड मॉर्निंग।

0: North, South, East, or West. Tune into the very best. Radio Masti, your number one beloved station.
1: एंड यस फ्रेंड्स, अब हमारे जाने का भी टाइम हो गया है. थैंक यू सो मच. आप खुश तो है, स्माइल तो कर रहे हैं, हमारे लिए इससे बड़ी चीज़ और हो ही नहीं सकती. आप खुश है. चलिए तो अगले गाने के साथ अब हम प्रॉमिस करते हैं कल मॉर्निंग 7 बजे आ जाएंगे आपको प्यार से उठाने और आपका साथ देने के लिए. थोड़ी देर में मनीष मारी है लेकर आपके लिए मॉर्निंग मस्ती. एंड दिस इज वेदिता सिंह. बाय बाय, सी यू टुमारो. ख्याल रखिएगा. एंड जो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे रेखा को, हैप्पी बर्थडे उनके पति स्वराज की तरफ से, उनके सासू मॉम, उनके सास, उनके ससुर जी की तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से अ हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू. चलिए मिलते हैं कल. बाय बाय, टेक केयर.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: घड़ी मिलाते चलिए, इस समय सुबह के 9 बजे हैं.

0: अब आप करुणा से समाचार सुनेंगे। नमस्कार करुणा।
1: नमस्कार अनुराधा। सभी दर्शकों को भी नमस्कार और श्रोताओं को भी। एमटीसी जेसी ने आज सुबह घोषणा की कि इस सप्ताह घुड़दौड़ शनिवार 22 अगस्त के बजाय रविवार 23 अगस्त 2026 को लगाई जाएगी। सप्ताह की शुरुआत में खराब मौसम के कारण और आज गुरुवार से सामान्य प्रशिक्षण फिर से शुरू होने के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। मॉरिशस और जिम्बाब्वे अपने व्यापार आदान प्रदान को नई गति देना चाहते हैं। जिम्बाब्वे के 30 से अधिक प्रतिनिधि स्थानीय बाजार को समझने और नए नौकरी अवसर, नए कारोबारी अवसर तलाशने के लिए मॉरिशस में हैं। दोनों देशों के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बीच कल एक बिजनेस फोरम के दौरान हस्ताक्षर किए गए ये MOU का उद्देश्य नए साझेदारी के रास्ते खोलना है। खाद्य सुरक्षा भी उन प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं जहां मॉरिशस और जिम्बाब्वे अपने सहयोग को और भी मजबूत कर सकते हैं। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए सरकार से सरकार साझेदारी के तहत बहुप्रतीक्षित MOU का आदान प्रदान किया जाएगा। पुलिस कैनाबिस के आयात की कथित साजिश के मामले में एक संदिग्ध की तलाश कर रही है। संदिग्ध का नाम शान कुमार चुलन है, जिसे मिथुन से भी जाना जाता है। वो लेमोन का रहने वाला है। जिस किसी के पास उसके बारे में कोई जानकारी हो, उसी से पुलिस से संपर्क करने की अपील की गई है। पुलिस ने

दिलाया है कि क्रिमिनल कोड की सेक्शन 172 के तहत किसी फरार व्यक्ति को पनाह देना एक अपराध है। गुलशन गोविंद को कल बॉम्बो अदालत में पेश किया गया। कैनाबिस की खेती और मेथाडोन रखने के आरोपों के संबंध में उनकी जमानत पर रिहाई की अर्जी पर बहस की गई। पुलिस ने संदिग्ध की जमानत की मांग का विरोध किया। मामले की अगली सुनवाई सोमवार 24 अगस्त को होगी। इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंस कमीशन यानी कि आईपीसीसी के अध्यक्ष पद पर सतीश फोगू की नियुक्ति के बाद आयोग में न्यायिक क्षेत्र के दो नए पेशेवर शामिल हुए हैं। रेणुका ब्रिजमोहन और मामाद उजिया ने कल दोपहर स्टेट हाउस में राष्ट्रपति के सामने शपथ ली। उन्होंने इस आयोग से संबंधित कानून में संशोधन लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। गौरतलब है कि आईपीसीसी का मुख्य दायित्व पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों की जांच करना है। और विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अभूतपूर्व क्रशिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा की है। दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर सहमति न बन पाने के बाद ये फैसला लिया गया। ट्रंप ने ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी देश ईरान को आर्थिक मदद या सहारा देगा उससे भी गंभीर वित्तीय परिणाम भुगतने होंगे। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के धन्यवाद। नमस्कार।

0: चले आओ फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी मस्ती मॉर्निंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मनीषमा के साथ रहेगा 9 से लेकर 12 बजे तक, यानी कि गानों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। प्यार भरे गाने आप सभी के नाम, वेलकम हियर।
1: RM2 रेडियो मस्ती, फील द

0: सुदर्शन रावल फॉर यू टोनीता गांधी और ओचा कॉली के आवाज में। आई होप यू हैव अ वंडरफुल वंडरफुल मॉर्निंग आउट देयर। वैसे आप एंजॉय करते रहिए। थर्सडे का दिन है, 20 अगस्त है, 9:30 बज रहे हैं। आप जुड़े आरएमटू रेडियो मस्ती मनीषा के साथ है जी till 12 बजे।
1: आरएमटू रेडियो मस्ती।

0: star for you, ladies and gentlemen, taken from the movie Bhoot Bangla. I hope you're having a wonderful time out there. Now, बजकर अभी 42 मिनट हुए हैं, 52 मिनट हुए हैं actually, and आप बज रहे हैं with the best of song selections. Here we go, दिलबर दिलबर for you. इशारे तेरे नेहा कक्कर की आवाज में. Enjoy कीजिएगा अपने morning को.
1: RM2 Radio Musti. Feel the Musti.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, it's 10 a.m. आइए सुनते हैं अभी के लिए संक्षिप्त समाचार आपके साथ करुणा जी. नमस्कार आपको.
6: नमस्कार मनीषमा, सभी को नमस्कार. MTCJC ने आज सुबह घोषणा की कि सप्ताह घुड़दौड़ शनिवार 22 अगस्त के बजाय रविवार 23 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी. सप्ताह की शुरुआत में खराब मौसम के कारण और आज गुरुवार से सामान्य प्रशिक्षण फिर से शुरू होने के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया. भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात करेंगे. इसके बाद पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए सरकार से सरकार साझेदारी के तहत एक बहुप्रतीक्षित MOU का आदान प्रदान किया जाएगा. पुलिस कैनाबिस के आयात की कथित साजिश के मामले में एक संदिग्ध की तलाश कर रही है. संदिग्ध का नाम शान कुमार चुलन है, जिसे मिथुन से भी जाना जाता है. वो लेमोन का रहने वाला है. जिस किसी के पास उसके बारे में कोई जानकारी हो उससे पुलिस से संपर्क करने की अपील की गई है. पुलिस ने याद दिलाया है कि क्रिमिनल कोड की धारा 172 के तहत किसी फरार व्यक्ति को पनाह देना एक अपराध है. गुलशन गोविंद को कल बॉम्बो अदालत में पेश किया गया. कैनाबिस की खेती और मेथाडोन रखने के आरोपों के संबंध में उनकी जमानत पर रिहाई की अर्जी पर बहस की गई. पुलिस ने संदिग्ध की जमानत की मांग का विरोध किया. मामले की अगली सुनवाई सोमवार 24 अगस्त को की जाएगी. उधर पुलिस के IT यूनिट ने सांसद वेरोनिक लेगोविन के मोबाइल फोन की कल जांच की. ये कार्रवाई 155 किलो गांजा आयात मामले के तहत की गई. ये प्रक्रिया करीब 3 घंटे तक चली. इस दौरान सांसद और उनके वकील मौजूद रहे. इससे पहले वेरोनिक लेगोविन से पिछले सप्ताह रोजिल के आत्सू ने भी पूछताछ की थी. उन्होंने इस मामले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है. फिलहाल इस मामले में 3 संदिग्ध पुलिस हिरासत में हैं. गुलशन गोविंद, रविंद्र चिमाजी और डैनियल जोजे ओगिस्त. वहीं चौथे संदिग्ध यानी मिथुन चुलन की पुलिस तलाश कर रही है. विदेश में रूस के रात भर किए गए ये मिसाइल हमला

0: में यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के क्षेत्र में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक हमले में 33 लोग घायल रहे हैं। हमले में अपार्टमेंट इमारतों और गोदामों को निशाना बनाया गया। एक अस्पताल और एक स्कूल को भी नुकसान हुआ है। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। नमस्कार।
1: Radio Musti. You're listening to Musti Mornings.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है।
1: Stay tuned. Stay Musti. Radio

0: Welcome to RM2.
1: Musty mornings.
2: अरे किसी को पहली बार देख कर ऐसा लगा तो क्या होता है, आप तो जानती हैं ladies and gentlemen. वैसे बिना देखे बिना जाने बिना आपको पहचाने यहाँ पर हम आपसे जुड़े ही रहते हैं. वैसे ये तो अलग कनेक्शन है, ये है RM2 रेडियो मस्ती का कनेक्शन. वेलकम बैक, इट्स सेगना. और यहाँ पर कुछ म्यूजिक सिलेक्शन आपको ज्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए आपके लिए बस लेकर आ रहे इतने सारे मजेदार गाने. इस सेगना आवर में आप तैयार हो जाए कुछ मस्ती करने के लिए. रूप दीरानी का मेवा फॉर यू. एक छोटा सा ब्रेक के बाद हियर वी गो.
0: RM2
1: रेडियो मस्ती.
3: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी. काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली. डिजाइनर लहंगा, लच्छा, साड़ी, जोधपुरी, क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में. हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने. फोन नंबर 5799-3782. हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और क्वालिटी.
4: Shan live in Mauritius. Saturday, 5th of September at SBICC Pai. Join us for the biggest Shan concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists. Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 214-6464. Another great event brought to you by Gravity Zero. Ticketbox.mu, your one-stop shop for the best events, hotels and flights in Mauritius.
0: RM2
1: Radio Mustache.

RM2 रेडियो मस्ती। इश्क जैसा कुछ टेकन फ्रॉम द मूवी फाइटर 2024 का ये गाना स्पेशली फॉर यू। वंडरफुल मॉर्निंग।

अरे क्या रंग लगा यहाँ पर। वैसे लेकर आ रहे हैं एक फैशन टिप्स। वैसे आप जुड़े हैं आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ। अगर बात करें तो जीन्स के बारे में, एक ऐसा फैशन स्टेबल है जो कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होता। आज हाई

0: वेस्टेड स्ट्रेट लेग्स जीन को आप फिटेड टॉप या फिर चकिन शर्ट के साथ पेयर कर सकते हैं, तब देखिएगा कि इंस्टेंटली लुक कैसे क्लासी हो जाती है। और अगर मोर क्लासी ऐड ऑन करना चाहते हैं तो हाई हील्स या फिर लोफर ऐड करें। और कैजुअल वाइब के लिए स्नीकर्स परफेक्ट हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रखिए परफेक्ट जीन्स वो नहीं जो सिर्फ ट्रेंडी हो, बल्कि वो है जो आपको कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करवाए। क्या कहते हो आप, सहमत हो ना आप हमारी बात से? तो चलिए जी, द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली प्लेड फॉर ऑल दोज म्यूजिक लवर्स जो कि ड्राइव करते करते बस ढूंढ रही है और या फिर सोच ही रहे हैं कि क्या यार आज के लिए लंच में क्या खाएं। एंड दिस सॉन्ग इज आउट टू यू, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बॉन अपेटाइट फॉर ऑल दोज जो कि अर्ली लंच करते हैं।
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

टू रेडियो मस्ती। सिकम के लोन्स और लीसिंग सुविधा के माध्यम से आप सकबा अपन सब खोजे के बिना कोनो चिंता के पूरा करे। सिकम के ग्रीन लोन जुन बा वो तोहरा एगो ऐसा जीवन शैली अपनाए खातिर वित्तीय सहायता देवेला जुन जैसी इकोलॉजी खा। इसे हमनी के जोली टापू के भी फायदा होई। जस्सी जानकारी खातिर आज ही सिकम से संपर्क करा या हमनी की वेबसाइट सिकम

0: sikkim.mu पर जाइएगा। इमें नियम आश्रत भी लागू बा सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
1: सिकुम ग्रुप, a lifetime commitment.
2: Jumbo, quality déco, fin l'osso extravaganza sales. Une fois par l'année, c'est un code prix incroyable, mais vrai. Bob, des pieds pas 100 roupies, des pieds pas 4 pieds pas

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check, din ke 11 baje hain. के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। एक बार फिर से करुणा जी के साथ नमस्कार आपको।
4: नमस्कार मनीषमा, सभी को नमस्कार। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के वास्ते गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट साझेदारी के तहत बहुप्रतीक्षित MOU का आदान प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद प्रेस संबोधन भी होगा। मॉरिशस और जिम्बाब्वे अपने व्यापार आदान प्रदान को नई गति देना चाहते हैं। जिम्बाब्वे के 30 से अधिक प्रतिनिधि स्थानीय बाजार को समझने और नए कारोबारी अवसर तलाशने के लिए मॉरिशस में हैं। दोनों देशों के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बीच कल एक बिजनेस फोरम के दौरान हस्ताक्षर किए गए MOU का उद्देश्य नई साझेदारी के रास्ते खोलना है। खाद्य सुरक्षा भी उन प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं जहां मॉरिशस और जिम्बाब्वे अपने सहयोग को और मजबूत करना चाहते हैं। MTCGC ने आज सुबह घोषणा की कि इस सप्ताह घुड़दौड़ शनिवार 22 अगस्त के बजाय रविवार 23 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी। सप्ताह की शुरुआत में खराब मौसम के कारण और आज गुरुवार से सामान्य प्रशिक्षण फिर शुरू होने के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। विदेश में श्रीलंका में एक सामूहिक कब्र की खुदाई के दौरान 582 कंकाल बरामद किए गए, जिनमें शिशुओं और बच्चों के कंकाल भी शामिल हैं। ये स्थल देश के गृह युद्ध के दौरान तमिल नागरिकों की सेना द्वारा हत्या किए जाने के आरोपों से जुड़ा है। मामले की जाँच में करीब 23 वर्षों की देरी हुई है। और सेंट्रल अफ्रीका में कैमरून की सीमा के पास एक सोने की खदान के ढह जाने से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक यह हादसा जाम्बोई गांव में हुआ। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। मामजेलो त्यागुज में 37 साल के 37-year-old श्री विराज भागोबान जो डू से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं आज दिन के 10 बजे की मां सीता भागोबान के मकान मामजेलो त्यागुज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमाशा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमोरो एट 10 AM। कापुरल रोड गुडलैंड में 74 साल की 74-year-old श्री जगदीश दामरी जो जगदीश जग से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे इनके मकान कापुरल रोड गुडलैंड से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुआगुज गुडलैंड की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमोरो एट 11 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: RM2
0: Radio Musti. You're listening to Musti Mornings. Stay tuned. Stay Musti. Radio Musti.

0: चलिए आखिरी घंटे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 11:06 हुए हैं। बिजुड़िया हैव अ वंडरफुल टाइम आउट देयर। मैसेजेस डेडिकेशंस ऑन 5994 पर भूलिएगा नहीं। बातें चलिए आप एंजॉय तो कर रहे हैं ना।
1: Pour en vivre un bon shopping à petit prix, méga déstockage Pevini Côte Platinum Plaza du 20 jusqu'à 31 août 2026. Top, t-shirt, polo shirt à partir de 10, des 150 roupies. Pantalon et chemise pour monsieur et madame à partir de 10, 500 roupies. Ban prix là, extra! Mais ban stock limité. Pas laisser l'occasion la passer. Platinum Plaza, Royal Road, poste de flaque. Téléphone 57 68 26 38.
2: Sean, live in Mauritius. Saturday, 5th of September at SBICC Pi. Join us for the biggest Sean concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists. Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 214-6464. Another great event brought to you by Gravity Zero. Ticketbox.mu, your one-stop shop for the best events, hotels and flights in Mauritius.
3: RM2 Radio Musti.
4: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा छलावटी।

0: You're listening to RM2, a radio masti.
1: दोस्तों, मैंने कविता लिखनी छोड़ दी थी, लेकिन कुछ दिन हुए तो ऐसा लगा जैसे सोए हुए जज्बात जाग उठे, प्यार की उमंगें मचलने लगी है।

0: Welcome to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: Time check दोपहर के 12 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा जी से. करुणा जी आपको नमस्कार.
7: नमस्कार पूनम. सभी को नमस्कार. भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बल्कि वे आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात कर रहे हैं. दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा क्षेत्र में भारत मॉरिशस सहयोग, विशेष रूप से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है. ये बैठक दोनों देशों के बीच मजबूत होते रणनीतिक और ऊर्जा संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है. मुलाकात के बाद पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए सरकार से सरकार साझेदारी के तहत बहुप्रतीक्षित एमओयू का आदान प्रदान किया जाएगा. मॉरिशस और जिम्बाब्वे अपने व्यापार आदान प्रदान को नई गति देना चाहते हैं. जिम्बाब्वे के 30 से अधिक प्रतिनिधि स्थानीय बाजार को समझने और नए कारोबारी अवसर तलाशने के लिए मॉरिशस में हैं. दोनों देशों के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बीच कल एक बिजनेस फोरम के दौरान हस्ताक्षर किए गए एमओयू का उद्देश्य नई साझेदारी के रास्ते खोलना है. खाद्य सुरक्षा भी उन प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं जहां मॉरिशस और जिम्बाब्वे अपने सहयोग को और भी मजबूत करना चाहते हैं. पुलिस कैनाबिस के आयात की कथित साजिश के मामले में एक संदिग्ध की तलाश कर रही है जिसका नाम शान कुमार चुल्लन है और जिसे मिथुन से भी जाना जाता है. वो लेमोन का रहने वाला है. जिस किसी के पास उसके बारे में कोई जानकारी हो उससे पुलिस से संपर्क करने की अपील की गई है. पुलिस ने याद दिलाया कि क्रिमिनल कोड की सेक्शन 172 के तहत किसी फरार व्यक्ति को पनाह देना एक अपराध है. गुलशन गोविंद को कल बॉम्बे अदालत में पेश किया गया. कैनाबिस की खेती और मिथाडोन रखने के आरोपों के संबंध में उनकी जमानत पर रिहाई की अर्जी पर बहस की गई. पुलिस ने संदिग्ध की जमानत की मांग का विरोध किया. मामले की अगली सुनवाई सोमवार 24 अगस्त को होगी. इस बीच पुलिस की आईटी यूनिट ने सांसद वेरोनिक लेगोविन के मोबाइल फोन की कल जांच की. ये कार्रवाई 155 किलो गांजा आयात मामले के तहत की गई. ये प्रक्रिया करीब 3 घंटे तक चली. इस दौरान सांसद और उनके वकील मौजूद रहे. और आपको बता दें कि फिलहाल इस मामले में 3 संदिग्ध पुलिस हिरासत में हैं. गुलशन गोविंद, रविंद्र चिमाजी और डैनियल जोजे ओगुस्त. वहीं चौथे संदिग्ध मिथुन चुलन की पुलिस तलाश कर रही है और वो पहले से ही पुलिस के रिकॉर्ड में हैं. इस सप्ताह घुड़दौड़ शनिवार 22 अगस्त के बजाय रविवार 23 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी. सप्ताह की शुरुआत में खराब मौसम के कारण और आज गुरुवार से सामान्य प्रशिक्षण फिर शुरू होने के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है. और विदेश में रूस के रात भर किए गए ये मिसाइल हमलों में यूक्रेन के राजधानी कीव और आसपास के क्षेत्र में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है. यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक हमले में 33 लोग घायल भी रहे. हमले में अपार्टमेंट इमारतों और गोदामों को निशाना बनाया गया. एक अस्पताल और एक स्कूल को भी नुकसान पहुंचा है. इसी के साथ समाचार समाप्त हुए. कुछ ही समय बाद शोक समाचार. कालीमाई रोड प्रोविडेंस कॉलेज मिलिटेयर में 72 साल की 72-year-old श्रीमती पिचाया चिदम्बरम पैदाइशी नाम नारायण स्वामी जो सावित्री से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है. अर्थी आज सपहर 3 बजे इनके मकान कालीमाई गली प्रोविडेंस कॉलेज मिलिटेयर से उठाकर दाह संस्कार

0: के लिए कॉन्डेमास का पावे की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। निर्मल रोड डागोचिया में 58 साल के 58 ईयर ओल्ड श्री संजय निर्मल जो बैनाव से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थात सुबह 3 बजे इनकी पत्नी श्रीमती अखी अख्तर के मकान निर्मल रोड डागोचिया से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिया कुंस्तों सैंपिया की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति।
1: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Retro Rhythm.
2: RM2, Radio Musty.

0: रेट्रो रिदम। नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। 12:12 हो चुके हैं और बाहर मौसम इतना सुहाना हो रखा है कि दिल कह रहा है आज कुछ ऐसे गाने बजाए जाएं जो दिल को सुकून भी दे और चेहरे पे खुशी भी ले आए। बस ये बारिश कहाँ जा रही है मुझे बताएं 5491294 पर कि आपके यहाँ पे बारिश आ रही है या नहीं आ रही है। हमारे यहाँ तो नहीं आ रही है क्योंकि बस ऐसे सूखा सूखा लग रहा है आज, जबकि सुबह सुबह जब हम आते हैं तो इतना प्यारा मौसम हो रखा होता है, ऐसे लगता है चारों तरफ हरियाली के बीच में छोटी छोटी सी जो बूंदे होती है ना बहुत ही सुंदर लगती है। चलिए भाई शुरू करते हैं रेट्रो रिदम। मैं हूँ आपके साथ पूनम और ये जो गाने हैं ना सदाबहार गाने हैं जो आपको भी पसंद आते हैं और स्पेशली मुझे भी, मेरे दिल के बहुत ही करीब है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे गाने हैं जो मूड को अपलिफ्ट कर दें और जो मूड को कहें ना अरे बस टेंशन मतलब सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, तो वो वाले गाने मुझे भेजिए। इंजॉय कीजिए अपने गानों को।
1: रेट्रो रिदम RM2 Radio Musti

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:23 हो चुके हैं और कहते हैं ना लता मंगेशकर की आवाज़ जब वो गाती हैं तो ऐसा लगता है कि बस वो गाती रहें, उसके बाद कोई ब्रेक ना लगे। मुझे दिल भी नहीं कर रहा होता कई बार जब वो उनके गाने चल रहे होते हैं, बोलने का ही नहीं मन कर रहा होता, बट फिर भी याद आता है हाँ वही प्रोग्राम कर रहे हैं, शो कर रहे हैं और इस टाइम आपको उठाना ज़रूरी है। इस टाइम दोपहर हो गए, कहीं खाना तैयार होगा, कहीं किचन से प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही होगी, जो बना रहे हैं उनको भी सलाम, और जो खाने बैठे हैं बस हम इतना ही कहेंगे आराम से खाइएगा, अपने पुराने गाने चाहे हम 50s के चलाएं, 60s, 70s, 80s, 90s तक जाएंगे, और 90s तक हम आपको सिर्फ इतना ही कहेंगे जो प्यार और मोहब्बत आपके दिल में है किसी के लिए वो वाले गाने बताइएगा और इंजॉय कीजिए अपने गानों को। साथ में बहुत ही प्यारा नेक्स्ट सॉन्ग आने वाला है ललित जी की तरफ से, कह रहे हैं मुगले आजम का गाना चला दीजिए प्लीज, तो ललित जी आपके लिए स्पेशली दिस सॉन्ग
0: रेट्रो रिदम।
2: RM2 Radio Musti. Radio.

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:35 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो एकदम के साथ। और अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गाना, एंजॉय किया आपने। मुझे भी बताइएगा मैसेज करके कि आप ये जो गाने हैं इसको एंजॉय कर रहे हैं, ये छोटा सा मैसेज कि एंजॉय कर रहे हैं, दैट्स ऑल, इट्स मोर देन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें भी एहसास होता है कि आपको कौन से गाने पसंद आते हैं दोपहर के टाइम में, जब इंजॉय के साथ में थोड़ा सा बूस्ट भी मिलता है और थोड़े से गानों के साथ माहौल भी बन जाता है। चलिए थोड़े से दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं। साथ में हमारे जुड़ी हुई हैं सिमला जी थ्रियोले से और अपनी फैमिली के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं। अब्दुल जी एंड सायरा बानो साथ दे रहे हैं और वो रोज साथ देते हैं, थैंक यू सो मच आप सभी का। हैप्पी बर्थडे टू गीतांजलि फिया जी की तरफ से और बेस्ट विशेस दे रहे हैं और कह रहे हैं बर्थडे है तुम्हारा पर एक्साइटेड हूँ मैं, ये होता है ये होता है। आपने बताया नहीं कि आपका उनके साथ क्या रिलेशन है, बट डेफिनेटली जो भी रिलेशन हो, चाहे दोस्ती का, प्यार का, बिटिया का या माँ का, जो भी है, हमेशा वो खुश रहें और ऐसे ही आप उनके साथ अपना, उनका बर्थडे या वो आपके साथ आपका बर्थडे शेयर करते रहें। प्रकाशवंती जी साथ दे रही हैं और इंजॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को बेल्जियम से, थैंक यू सो मच आपका। और जो आपकी पसंद है शायद वो मेरी भी पसंद है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने इस गाने की फरमाइश की, थैंक यू सो मच। वे श्वानी धूमन जी साथ दे रही हैं और अपनी बहन इंदिरा शारदा और सहेली नीला और प्रतिभा एंड शोभा के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं। साथ में हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं धनवेश्वर जी अपनी पत्नी सुनीता जी के साथ में और निशा रानी मीना ऋषि और अपने पूरे परिवार के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं। वीना जी काम पर है और सभी स्टाफ को कह रही हैं प्लीज़ ये जो गाना आएगा ना मेरा तो ज़रूर सुनना। तो मैं आपको ये बोलती हूँ जो आपकी पसंद है वही मेरी पसंद होती है और मैं हमेशा यही कहती हूँ इंजॉय कीजिए गानों को, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, गाने आपके हैं, ये रेडियो स्टेशन आपका है और ये रेट्रो रिदम जहाँ पे पुराने गाने चलते हैं ये भी आपका, इंजॉय करते रहिए इन गानों को।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: टाइम चेक दोपहर के 1 बज रहे हैं।

0: सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार सुमायरा से. सुमायरा आपको नमस्कार.
1: नमस्कार राधा. मुर्शिद के 14 फिशरीज पोस्ट में मत्स्य मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है और कल ही मेबर्ग में एक समारोह का आयोजन किया गया ताकि वहां के स्थानीय मछुआरों को विशेष सुरक्षा सामग्रियां दी जा सके ताकि मछली मार में उन्हें समर्थन मिले. इसके अलावा वहां पर मौजूद मंत्रियों और इलाके के सांसदों ने विभिन्न सहायक कदमों पर बात की, खास तौर पर मछुआरों का समर्थन करने और उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए विभिन्न वित्तीय योजनाओं पर उन्होंने बात की. ये जाने कि देश में 2000 से ज़्यादा माहीगीर हैं. एबन में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के संदर्भ में एक नए स्थल का उद्घाटन किया गया है, एक ऐसी प्रयोगशाला जो इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती हैं, रोबोटिक और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना विजन पूरा करती हैं. इसके ज़रिए नौजवान अपनी काबिलियत आजमा सकते हैं और ख़ुद अपनी परियोजनाओं पर काम कर सकते हैं. विदेश में रूस के हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है. ये हमले राजधानी यूक्रेन की राजधानी में पेश आए हैं और कम से कम 40 लोग जख्मी बताए जाते हैं. इसमें कई एयर डिफेंस मिसाइल भी शामिल हैं और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज दुगना हो गया है, वो भी सिर्फ 10 सालों में, जो कि $40 trillion है. ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन के शासनों के दौरान काफ़ी खर्च किए गए और सूद दर भी काफ़ी बढ़ गई थी. सन 2016 में अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज $20 trillion था. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए. कालीमाई रोड प्रोविडेंस कोटी मिलिटिया में 72 साल की 72 years old श्रीमती पिचाया चिदम्बरन. श्रीमती पिचाया चिदम्बरन पैदाइशी नाम नारायण सामी, जो सावित्री के नाम से ज्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है. अर्थी आज तीन बजे इनके घर कालीमाई रोड प्रोविडेंस कोटी मिलिटिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंडे मास की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. निर्मल रोड डाकोचिया में 58 साल की 58 years old श्री संजय निर्मल जो बयानों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई हैं. अर्थी आज तीन बजे इनकी पत्नी आखी अख्तर के घर निर्मल रोड डाकोचिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकुंस्टांस सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. शोक में डूबे इन परिवारों से हमें हमदर्दी है.
2: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Retro Rhythm.
3: RM2, Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:09 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ और मैं इस समय आपके साथ हूं पूनम। तो आज दोस्तों वर्ल्ड मॉस्किटो डे है, नाम सुनकर हंसी तो आ जाती है पर एक छोटा सा मॉस्किटो इतने ज़्यादा परेशानी दे सकता है, लेकिन डेंगू जैसे, चिकनगुनिया जैसे कई बीमारियाँ फैला सकता है। तो आज एक छोटा सा रिमाइंडर है, घर के आसपास पानी बिल्कुल जमा मत होने दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत दिनों से कहीं पर पानी इकट्ठा करके रखा है, क्योंकि मॉरिशस में पानी की कमी चली रही है, तो कई बार होता है कि बहुत सारी बकेट्स भर के कोने में रख देते हैं, तो आपको सिर्फ इतना ही कहेंगे

0: बहुत दिन हो गए हैं तो आप उस पानी को चेंज कर लीजिए, थोड़े से गार्डन में डाल दीजिए, थोड़ी सी आसपास ऐसी जगह होती है जहाँ पर वेजिटेबल्स लगाई होती है वहाँ पे वो पानी डाल दीजिए, और फिर एक या दो ही बकेट्स आप भर के रखिए जो आपके इमरजेंसी टाइम में काम आ सकती है। बट आपको इतना ही बोलेंगे पानी को इकट्ठा मत होने दीजिए। और साथ में कहते हैं ना, मच्छर जो होता है सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है, जब हमें कुछ परेशानी होती है तो फिर डॉक्टरों के पास भागना पड़ता है, इसलिए इकट्ठा मत होने दीजिए पानी को। और मॉस्किटो डे के लिए क्या है, आपने कुछ और नहीं करना है, थोड़ा सा घर में धूप अगरबत्ती वगैरह चलाते रहा कीजिए, इंजॉय कीजिए अपने गानों को। और ये वाला गाना बहुत ही स्पेशल सॉन्ग है, हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं उनके लिए, तो पहले चलाते हैं उसके बाद आपके सबके मैसेजेस लेंगे। इससे बीच में अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5499124 पर। इंजॉय कीजिए गाने को।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गाना, इस दुनिया में जी नहीं सकता। मैं बन गया वीरू दादा। तो भाई हम भी आपके लिए आपको बनाने वाले हैं वीरू दादा, क्योंकि आपके सबके जब मैसेजेस आते हैं ना, तब एहसास होता है कि आप कितना प्यार करते हैं अपने उस परिवार को या अपने दोस्तों को, अपने उन लोगों को जिनके बिना आप जी नहीं सकते। तो चलिए भाई, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है सरिता जी का गुडलैंड से और साथ दे रही हैं, इंजॉय कर रही हैं। ज्योति जी शातो बनारस से, आशनी रेखा सुरेखा AMT मधु फैमिली के लिए एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं। गीता सीता भोलाराम फ्रॉम शातो बनारस अगेन। देव जी पारिस से साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है, जो मुझे मेरे स्कूल के दिनों को याद दिला देता है। अरे बिल्कुल हम चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे, आप कहें और हम चलाएं ना, ऐसा हो नहीं सकता। गीता जी कात्रबोन से जुड़े हैं, वो भी इंजॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को, थैंक यू सो मच। रेशमा जी अपने हस्बैंड आशीष और डॉटर्स मिष्टी एंड हिमाक्षी के लिए एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं, कह रही गाने तो बहुत अच्छे चल रहे हैं और हम इतना इंजॉय कर रहे हैं और जो काम है वो मैं आपको बोल रही हूँ करते रहिए, उसको मत रोकिए, पर कान जो है हमारी तरफ रखिए, इंजॉय कीजिए इस गाने को जो कि है मुकेश की आवाज में, बहुत ही सुंदर सा गाना है, इंजॉय कीजिए।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम। 1:33 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ। और अभी आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गीत, मतलब बहुत ब्लैक एंड वाइट टाइम, और ऐसा टाइम जहाँ पे मतलब अगर आंख चली जाए, दिल चला जाए तो बस फिर तो और अपना आज के ज़माने में कुछ रहता ही नहीं। और जो पुराने लोग हैं ना, उनको वो टाइम बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए भाई, हम भी आपसे एक प्यारा सा सवाल पूछते हैं। अगर आपको अपने पुराने दिनों को सिर्फ एक दिन वापस मिल जाए, यानी कि चाहे स्कूल वाला दिन, कॉलेज वाला दिन, शादी वाला दिन, या दोस्तों ये कौन सा दिन आप चुनेंगे जो आपको सबसे खूबसूरत लगता है, हमें भी मैसेज कीजिए 5499124 पर। इंजॉय कीजिए थोड़े से प्यारे से वो गाने जो कि थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम है भाई, इस टाइम खाना वाना खा लिया होता है, थोड़ी सी आँख भर जाती है, थोड़ी सी भारी हो जाती है। बिल्कुल भारी नहीं करनी है, गानों को थोड़ा सा तेज करो, थोड़ा सा काम करना है, तो इंजॉय करो इस गाने को।
1: रेट्रो रिदम RM2 Radio Musti.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रेट्रो रिदम। 1:45 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ और इस समय मैं हूँ आपके साथ पूनम। तो कहते हैं ना कि जब घर में बच्चे होते हैं तो बहुत मतलब नॉइज़ हो जाती है और लगता है कब शांति मिलेगी, कब ये स्कूल जाएंगे कॉलेज जाएंगे, और वही टाइम होता है जब वो चले जाते हैं तो घर में वो कोई आवाज़ नहीं होती तो इतना सैड सा हो जाता है। अरे क्या करें, यही तो फैमिली होती है, थोड़ी सी मस्ती भी चाहिए, थोड़ा सा शोर भी चाहिए और ढेर सारा एक दूसरे से प्यार भी चाहिए। तो इन्जॉय करते रहिए, अपने गानों को साथ में ले लेते हैं, दो तीन प्यारे से मैसेजेस। कल्याणी जी साथ दे रही हैं और अपने फ्रेंड्स के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं। विनय देवानंद, मुकेश, सुभाष, नुको, गुरुदेव सेतुल जी पंपलेमुस से साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को। और वीना गंगाधर अपने हबी देव के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं। दारन, श्वेता, रविश, प्रशाल, उवेशा, आपादू फैमिली एंड मालिनी जी साथ दे रही हैं, इंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑफिस रिलैक्स से कोई है बट उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, पर हम आपको यही बोलेंगे गानों को इंजॉय कीजिए, थोड़ा सा मूड को रिलैक्स कीजिए। घर जब शाम को जाएंगे तो देखिएगा कितना अच्छा लगता है, और जो घर में है, जो बाहर गए हैं, जब वो वापिस आएंगे तो जब हल्ला गुल्ला मचता है इतना अच्छा लगता है। ये वो ही समझ सकता है जो लोनली रहता है और उसको जब वो आवाज़ें सुनाई देती है, तो इसलिए यही प्यार बनाए रखिए, इंजॉय कीजिए अपने गानों को। बहुत ही प्यारा सा गाना आने वाला है, मतलब रियली इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इंजॉय कीजिए।
1: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो मस्ती।

1:54 हो चुके हैं दोस्तों, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। आप जहाँ भी अपना दिन खूब इंजॉय कीजिएगा, हंसते रहिएगा, अपनों के साथ खुशियाँ बांटते रहिएगा। आपके मैं आपके साथ ही पूनम रेट्रो रिदम में सुनते रहिए और इंजॉय कीजिए RM2 रेडियो मस्ती। मेरे बाद आपको साथ मिलने जा रहा है किसका, परी का। इंजॉय कीजिएगा।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
1: नमस्कार आदाब. मुर्शिद के 14 फिशरीज पोस्ट में मत्स्य मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया. कल मेबग में स्थानीय मछुआरों को विशेष सामग्रियां दी गई ताकि उन्हें उनकी सुरक्षा हो. इस

0: इस गतिविधि का मकसद है उनका समर्थन करना। इस मौके पर मंत्रियों और इलाके के सांसदों ने मछुआरों को दी जा रही सहायता योजनाओं पर बात की। आपको बता दें कि देश में फिलहाल 2000 से ज्यादा मछुआरे हैं। इबन में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के संदर्भ में एक नए स्थल का उद्घाटन किया गया है, जहां एक नई प्रयोगशाला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कार्यरत है, रोबोटिक और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये कार्यशाला अपना विजन पूरा करती है। इसके जरिए मुर्शिद नौजवान अपनी परियोजनाएं विकसित कर सकते हैं और अपनी काबिलियतों को भी। विदेश में यूक्रेन की राजधानी में रूसी हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है और 40 लोग घायल हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि घरों पर वार किया गया है और इस हमले में एयर डिफेंस मिसाइल को दागा गया है। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज एक दशक में दुगना हो गया है, जो कि 40 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के शासनों के दौरान खर्च काफ़ी बढ़ गए थे और सूद दर भी सन 2016 में राष्ट्रीय कर्ज 20 ट्रिलियन डॉलर था। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। SSR रोड कौचे मिलितिया में 77 साल के 77 years old श्री राजेंद्र तिलकदारी, श्री राजेंद्र तिलकदारी जो राजन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 11 बजे इनके घर SSR रोड कौचे मिलितिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वीरमय की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रेमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: More music, music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies, Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: Well, that was taken from the film Alpha. और इसी गाने के साथ आपका warm welcome पंजाबी तड़का और जब Thursday के दिन पंजाबी तड़का हो जाए in the afternoon, जहाँ पर आपका mood थोड़ा सा थका हुआ है. I know सुबह से काम कर रहे हैं आप. Now it's time कि हम आपको थोड़ा सा break दे, musical break, जहाँ पर गानों को सुनते सुनते आपकी ये जो afternoon है और भी लाजवाब होने वाली है. So thank you so much friends, हमारा साथ दे रहे हैं आप. Warm welcome, तहे दिल से आपका हम स्वागत करते हैं. On the waves of RM2 Radio मस्ती, आवाज पे मत जाइए, हमारे इमोशन पर जाइए, जहां पर हमेशा आपके लिए प्यार ही प्यार बेशुमार लेकर हम आते हैं. सभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ. 12:04 PM हम सजाने वाले हैं आपकी आफ्टरनून को बी टाउन की खबरें

एंड सम लेटेस्ट बॉलीवुड सॉन्ग्स के साथ. सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जिन्होंने ट्यून इन किया है और जो अभी धीरे धीरे कनेक्ट कर रहे हैं. बस आपके लिए होने वाले हैं कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक्स. कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड.

0: FM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, साड़ीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti।

कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: to Radio Musti.
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: And well, friends, it's time to read out aapke messages, aapke dedications on 5499-1294. Itne pyar se hamara saath de rahe hain this afternoon. So, yahan par Sharda ji hamara saath de rahe hain aap aur kehti hain gana for beta Rajveer. Aaj he's celebrating his birthday on 20th of August. Unke liye pyar and special wishes. Ye hai sabhi parivar ki or se. चलिए यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं कात्र कोको से आप है शिल्पा और आप भी कनेक्टेड हैं रेडियो मस्ती के साथ थैंक यू गॉट योर मैसेज एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज थैंक यू सो मच डियर अगला गाना होगा आपके नाम ज्योति जी वॉर्म वेलकम आपका ऑन द वेव्स ऑफ आरएम टू रेडियो मस्ती आप भी कनेक्टेड हैं और कहती है गाना हो जाए फॉर डियर फ्रेंड वर्षा दोनों एक साथ मिलकर आरएम टू एंजॉय कर रहे हैं और उस वक्त ड्राइव कर रहे हैं सो हैव अ सेफ राइड

0: एंड नेक्स्ट गाना आप दोनों के नाम, आप दोनों की दोस्ती के नाम एंड ऑफ कोर्स गुड म्यूजिक के नाम. साथ ही यहाँ पर विश्वति जी हमारा साथ दे रही हैं आप और डेडिकेट करना चाहती हैं अगला गाना, ये है फॉर हस्बैंड दीपक. उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेस, कह रही हैं अभी काम पर हैं लेकिन उन्हें याद कर रही हूँ, उन्हें मिस कर रही हूँ. तो चलिए अगले गाने के साथ हम अपना प्यार आप तक पहुँचा रहे हैं. थैंक यू फॉर ऑल द मैसेजेस, ऑल द डेडिकेशंस. मैं हूँ परी आपके साथ ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती.
1: RM2 रेडियो मस्ती

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों को लेकर स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
6: नमस्कार आदाब. 18 सालों के बाद पोटली सीट फिर से कार्यरत होने लगेगा. इन कार्यों की वजह से 500 मिलियन रुपए लगे हैं. कुछ देरी हुई है लेकिन कार्य संपन्न होने होंगे. मुर्शिद के 14 फिशरीज पोस्ट में मत्स्य मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया. कल मेबाग में स्थानीय मछुआरों को सुरक्षा सामग्रियां दी गई ताकि मछली मार का समर्थन किया जाए. वहां पर मौजूद मंत्रियों और सांसदों ने मछुआरों का समर्थन करने और उनकी हिम्मत अफजाई के लिए मुख्तलिफ सहायक योजनाओं का उल्लेख किया. ये जाने कि देश में 2000 से ज्यादा माहीगीर हैं. नवीनीकरण और टेक्नोलॉजी को मजीद बढ़ावा देने के लिए बैन में एक नई प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया. ये लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है. रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये प्रयोगशाला मुर्शिद नौजवानों को अपनी परियोजनाएं विकसित करने की संभावनाएं देती हैं. विदेश में अमेरिका के कंग्रेशनल बजट ऑफिस ने एक आंकड़ा आम किया है. अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 10 सालों में 40 ट्रिलियन डॉलर का हो गया है. ये बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के शासनों के दौरान काफ़ी खर्च किए गए हैं और सूद

0: दर भी बढ़ी है। सन 2016 में राष्ट्रीय कर्ज $20 trillion था। तो अभी के लिए बस इतना ही, थोड़ी देर में शोक समाचार। एवेन्यू दे सैब्लों ग्रिनी फ्रांस में 61 साल के 61 years old, श्री धर्मराज चितामन जो सुनील के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी मंगलवार को उनके घर फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रिनी फ्रांस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रेमेशन ऑन ट्यूजडे एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies. Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों 3:20 जहां पर बी टाउन की खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज। सलमान खान से जुड़े काले हिरन मामले पर बनी फिल्म काला हिरन द बैटल फॉर लेगेसी को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट के 27 जुलाई को जारी किए गए आदेश के बाद फिल्म का टीजर और उससे जुड़ी सामग्री हटाई गई थी। अब मामले में एक और नया अपडेट सामने आया है। हाल ही में निर्माता निर्देशक अमित जानी ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एक डिजिटल से बातचीत के दौरान उन्होंने धमकियों, टीजर विवाद, सुरक्षा और फिल्म की रिलीज को लेकर अपनी बात रखी। वहीं फिल्म के निर्देशक भरत एस श्रीनेत ने भी कहा कि वो फिल्म में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। अमित जानी ने धमकी के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि जब से मैंने फिल्म का टीजर रिलीज किया है तब से ही मुझे धमकियां आनी शुरू हो गई है। लगभग 10,000 से 15,000 ऑडियो कॉल्स इंस्टाग्राम और फेसबुक का मैसेंजर पर मैसेजेस आए हैं। मुंबई से जो कॉल आए उनमें कहा कि फिल्म रिलीज करोगे तो मार दिए जाओगे और मुंबई में आओगे तो तुम पर अटैक होगा। सो यहां पर विवाद अब और गहराता जा रहा है और अमित ने आगे बताया कि अब मैं उन नंबर्स के आईपी एड्रेस वगैरह देख रहा हूं और वॉइस सुनी तो ज्यादातर लोगों की भाषा मुंबई की ही थी। उनकी डीपी में भी ज़्यादातर लोगों ने सलमान खान की तस्वीर लगा रखी है और उनकी प्रोफाइल में जाकर देखता हूँ तो उन्हें आज तक जितने भी वीडियो डिजिटल कॉल्स या फिर जो मैसेजेस मिले हैं उनमें से 24 साल से सलमान खान की

0: फिल्म्स फॉलो कर रहे हैं जो यंगस्टर्स हैं वही नजर आ रही हैं और साथ ही उन्होंने बताया कि अब वो इन मैसेजेस से काफ़ी परेशान हो गए हैं और ये मामला अब ये सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे जहां पर हाई कोर्ट ने तो यहां पर टीज़र हटाने का और जो भी विवादित सीन्स थे उन्हें हटाने का आदेश दिया था लेकिन यहां पर निर्माता निर्देशक का कहना है कि वो फिल्म में कोई भी बदलाव नहीं लाएंगे और अभी के लिए तो उनकी जो भिड़त है वो सीधा सलमान खान के साथ है और ये तो हम जानते हैं कि इंडस्ट्री में जो भी सलमान खान से पंगा लेता है उनका क्या हाल होता है अब ये रूमर्स है या फिर रियलिटी है वी डोंट नो दैट लेकिन अभी के लिए तो ये मामला और भी गहराता जा रहा है जहां पर लोग रियलिटी जानना भी चाहते हैं लेकिन जैसे हम जानते हैं कि काफ़ी दबाव है और दबाव के बाद क्या ये फिल्म रिलीज होगी क्या जो रियलिटी है ये लोगों के सामने आएगी इसके लिए हमें करना है थोड़ा सा इंतज़ार
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.
0: तो चलिए दोस्तों अभी हमारा साथ दे रहे हैं बी टाउन की खबरों के साथ कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स आपके लिए हम प्ले कर रहे हैं अभी के लिए इट्स टाइम फॉर पसूरी अरिजीत सिंह तुलसी कुमार की आवाजें एंड ये गाना आप सभी के नाम जो दे रहे हैं हमारा साथ ऑन रेडियो मस्ती

0: RM2 Radio Masti.
1: And well, with this beautiful track, it's time for Pari to say goodbye. जाते जाते आपके लिए ये प्यारा सा गाना और साथ ही यहाँ पर connected हैं लीना from Plain de Hoche, उनकी little princess जिया, husband राजीव और होशनुआ से उनके सभी जो दोस्त हैं जो restaurant से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. This one goes out for you all. शाम देव चरण साथ दे रहे हैं आप. गाना for your friends सुखदेव, माहिन, रवीन और सूर्या, सभी के लिए आपने भेजी है good good wishes. और यहाँ पर हमारा साथ दे रही हैं हमारी प्यारी सी ललिता जी. तो चलिए गाना सभी जीतन परिवार के नाम एंड वेल रेडियो मस्ती टीम के साथ जुड़ गए हैं अब्दुल एंड सायरा बानू. सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक आपके नाम. इसी ट्रैक के साथ परी साइनिंग ऑफ. आ रही है गिनीशा लेकर योर अवतार वाइब्स. उनका साथ निभाइए. हैव अ वंडरफुल टाइम एंड एंजॉय योर टाइम.

0: Such beautiful and mesmerizing गाने लेकर आए हैं आप लोगों के लिए on our RMT Radio Masti. Thank you so much जी साथ देने के लिए. Check your time. It's already 4 p.m.
1: RMT Radio Masti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
1: Radio Musti.
4: North, South,
1: 103.5.
4: East, West,
1: 96.4.
4: Center,
1: 99.4.
5: RM2, Radio Musti.
1: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. The Musti. The Musti.
0: ये सुनते हैं समाचार सुमेरा अकबर अली के साथ. नमस्कार और आदाब.
6: नमस्कार रादा. मॉरिशस और भारत के बीच सहयोग एक नई मजबूती ले रहा है. ईंधन के क्षेत्र में आज पोर्टली में G2G समझौते पर दस्तखत किए गए. आपको बता दें कि भारत के पेट्रोल और नेचुरल गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी मॉरिशस के औपचारिक दौरे पर हैं. भारतीय मंत्री ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात भी की. 18 सालों के बाद पोर्टली थिएटर फिर से कार्यरत होने लगेगा. निर्माण कार्यों के लिए काफी वक्त लगा. इस परियोजना के लिए 500 मिलियन रुपए लगे हैं. मॉरिशस के चौला फिशरीज पोस्ट में मत्स्य मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया. कलमेबर्ग में स्थानीय मछुआरों को सुरक्षा सामग्रियां दी गई ताकि मछली मार का समर्थन किया जा सके. वहां पर मौजूद मंत्रियों और सांसदों ने मछुआरों का समर्थन करने और उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए मुख्तलिफ सहायक योजनाओं का उल्लेख किया. ये जाने कि देश में 2000 से ज्यादा माहीगीर हैं. विदेश में कैमरून की सरहद के पास जाम्बोए खान के पास एक भूस्खलन पेश आया और सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक ये खान गैर कानूनी तरीके से कार्यरत था. इसी वजह से वो इलाका खतरनाक था. अभी तक लाशों को निकाला जा रहा है. और केंद्रीय अफ्रीका में कोलेरा का फैलाव होता जा रहा है. कैमरून और चाद में इस बीमारी की वजह से सैकड़ों मौतें दर्ज हो रही हैं. साफ पानी नहीं है और स्वास्थ्य मूल ढांचों की कमी है. इसी वजह से इलाज मुनासिब नहीं है. प्रभावित इलाकों में अधिकारियों ने फैलाव को रोकने की कोशिश की लेकिन जीवन स्थिति अच्छी नहीं है. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए.

0: तेरा रोज में 37 साल के 37 years old श्री विराज बागोबान जो दू के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है अर्थी कल 10 बजे इनकी मां सीता बागोबान के घर तेरूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो 10 AM कपोरो रोड गुडलैंड्स में 74 साल की 74 years old श्री जगदीश डामरी जो जगदीश जग के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है अर्थी कल दिन के 11:30 बजे इनके घर कपोरल रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआरूज गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 AM शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2.

That was in the lovely voice of Tony Kakkar. Nagin तो नहीं आई, लेकिन गिननी तो आ गए ना आप लोगों का साथ देने के लिए. जी हाँ दोस्तों, चकिया टाइम स्टूडियो के घर में 4:06 हो चुके हैं. गुड आफ्टरनून जी, नमस्कार जी, प्रणाम जी, कैसे हो, केम चो हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स. आई रियली होप एवरीवन इज हैविंग अ गुड टाइम. इट्स थर्सडे 20th ऑफ अगस्त. अरे मेरी जान, 20 तारीख भी हो गई. ओ हो, इस महीने के 20 दिन भी गुजर गए, हमें पता भी नहीं चला. इट मीन्स कि टाइम जो है ना किसी के लिए नहीं रुकता है, बस चला जा रहा है. और एक्चुअली इसलिए हम हमेशा आपको बोलते हैं कि अपने जिंदगी को ऐसे जियो जैसे कि आज आपकी आखिरी दिन हो. तभी तो हम धमाकेदार गाने चुन चुन कर लेकर आते हैं स्पेशली आप लोगों के लिए, टू ब्रिंग द गुड वाइब्स एंड योर ब्यूटीफुल स्माइल टुगेदर. सो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर. आई हैव गॉट यू द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक राइट नाउ ऑन आरएनटी रेडियो मस्ती इन योर रफ्तार वाइब, जहां पे गिनीशा लेके जाती है ऑन अ फिल्मी राइड. जी हाँ दोस्तों, लेके जाएंगे बॉलीवुड की दुनिया में फॉर सम बहुत ही खूबसूरत गाने. एंड यस टू ऑल दोस्ट जो अभी काम से निकल चुके हैं एंड ऑलरेडी हिटिंग द रोड. हेलो जी भाई साहब बहन, आराम से गाड़ी चलाना ठीक है. रिमेंबर ना, यू हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली वेटिंग फॉर यू एट होम.

The Bollywood Radio Musti. Well guys, I really hope that you are really loving these beautiful and lovely गानों का selections जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए. Time beta चला जा रहा है, 4:16 हो चुके हैं. आवाज पे मत जाना, जी हाँ गला बैठ गया है, but still I'm here. ऐसे दुनिया में जिंदगी में हमेशा वो करना चाहिए आपको जो आपके दिल को खुशी मिलती है, जैसे कि चाहे मेरा गला खराब हो या ना हो लेकिन मुझे तो खुशी मिलती है ना यहाँ पे आके आप लोगों से बात करके आपका साथ देके. So keep on enjoying your life and enjoying the good music, always do whatever makes you happy my sweetheart. And yes, all those जो बस में बैठे हैं अभी, हाय गोज टू यू. हे कंडक्टर्स, कैसे हो आप? टिकट अच्छे से काट रहे हो ना? बिल्कुल जी. एंड टू ऑल लवली ड्राइवर्स, चाहे आप मेट्रो में बैठे हो, टैक्सी में बैठे हो, ट्रक में बैठे हो, कहीं से भी जान, अगर आप लोग हमारा साथ दे रहे हो तो आप ज्यादा बदतमीज ना होना. दिल थोड़ा सा बदतमीज हो सकता है लेकिन आप बदतमीज ना होना.

टाइम बीटा चला जा रहा है 4:29 हो चुके हैं. हेलो जी माय ब्यूटीफुल एंड लवली हियर मस्ती फैमिली, कैसे हो आप? आफ्टरनून का टाइम है, काम का लॉन्ग डे ऑलमोस्ट सुबह हो चुके हैं और अब सब अपने अपने घर की तरफ निकल गए हैं. सो ट्रैफिक का टेंशन छोड़ दीजिए, स्ट्रेस को साइड में रख दीजिए, वॉल्यूम जो है अपने रेडियो का थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए बिकॉज अब टाइम है गुड वाइब्स का. और अब जो ट्रैक आ रहा है ना, दिस वन इज स्ट्रेट अवे फ्रॉम द ब्यूटीफुल वाइब्स ऑफ ट्रिनिडैड एंड टोबैगो. एनर्जेटिक है, कलरफुल है, फुल ऑफ रिदम है, एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू शेक ऑफ दैट वर्क डे फीलिंग. सो माय लवली लिसनर्स, व्हाटएवर यू आर हेडिंग राइट नाउ, घर जा रहे हो, रोड पे हो या बस चिल कर रहे हो, लेट द म्यूजिक टेक ओवर राइट नाउ ऑन आवर एंड टू रेडियो मशीन योर रफ्तार वाइब्स. सो मॉरिशस, व्हाटएवर यू आर हेडिंग, थैंक यू सो सो मच साथ देने के लिए. तो चलिए जी, वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया है, स्माइल ऑन हो चुका है, हियर वी गो, लेट्स हिट इट.

0: चलिए जी, खूबसूरत गानों का ये सिलसिला बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में। अराउंड टू रेडियो मस्ती, ड्राइव केयरफुली गाइस इफ यू आर ड्राइविंग राइट नाउ। तो अभी के लिए चलिए लेके जाएंगे स्ट्रेट अवे स्पोर्ट्स की दुनिया में हमारे स्पोर्ट्स गुरु के साथ।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: आरएम2
3: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर, द फ्लो एक्सपर्ट।
4: Sports News,
5: Radio Musti in the mix.
0: तो चलिए जी, स्पोर्ट्स गुरु इज ऑल सेट फॉर सम लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज़। गुड आफ्टरनून टू यू अरविंद जी।
6: गुड आफ्टरनून आपको, गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स। सो ऑल सेट, कल से प्रीमियर लीग सीजन 2026-2027 शुरू, और बहुत कुछ हो रहा है खासतौर पर खिलाड़ियों के ट्रांसफर को लेकर। इसमें बीबीसी के जो स्पोर्ट्स पंडित हैं, जो अपने प्रेडिक्शंस देते रहते हैं, 26 के प्रेडिक्शंस आए हैं। कैन यू इमेजिन, 26 में से केवल 3 मैनचेस्टर सिटी के हक में जा रहे हैं, जबकि 23 आउट ऑफ 26 उनका मानना है कि आर्सेनल ही ये लीग टाइटल जीतेगा, डबल पूरा करेगा। और जिन्होंने कहा है कि सिटी जीतेगा, उनमें जोहार, पोल रॉबिन्सन, श्रे गिवन हैं, आर्सेनल को दूसरे स्थान पर रखा है। जहां तक लिवरपूल का सवाल है, केवल एक टोमास हिल्सबर्गर ने लिवरपूल को दूसरे स्थान पर रखा है, और सिटी को चारों तरफ दूसरे स्थान पर टियो वालकोट, रैचल ब्रांड, फिनिस मार्टिन क्यून और ट्रॉय डिनी, इन्होंने भी लिवरपूल को सेकंड पोजीशन पर रखा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड को सेकंड पोजीशन पर रखने वाला है सिर्फ स्टीव साइडवेल, और यूनाइटेड को थर्ड प्लेस में काफी लोगों ने रखा है। तो बिग फेवरेट आर्सेनल, 23 आउट ऑफ 26 फुटबॉल प्रोफेशनल्स कह रहे हैं कि आर्सेनल ही ये लीग टाइटल जीतेगा। तो खिलाड़ियों को खरीदा जा रहा है। इधर टोटनहम हॉटस्पर मैनचेस्टर सिटी से डबल डील पूरा करना चाहता है, साविनो और ओमा मामोश। साविनो को पहले से ही ढूंढ रहा था स्पर्स, लेकिन अब लगता है कि वो जाएगा, क्योंकि सिटी में भी नए नए खिलाड़ी आने लगे हैं। और आने की बात हुई तो लिवरपूल में अभी तक बाकुला नहीं आया है। बातें हो रही हैं कि जोन्स जा रहा है इंटर मिलान की ओर। सो आज कुछ मैच खेले जाएंगे, कुछ नहीं, बहुत मैच खेले जाएंगे। ये हैं यूईएफए यूरोपा लीग के प्लेऑफ, और फिर यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग के प्लेऑफ। यूईएफए यूरोपा लीग के प्लेऑफ के फिक्स्चर्स आपको दे दें। कायरात का मुकाबला आंदे अलेक्से, याग्लेलोनिया, इबेरिया, जाल्बी, साल्सबर्ग, बेसिकतास, कोनो जालगिरिस, इग्नासिया, लिल स्ट्रोम, लेच, टून, ट्रांसवनस्पोर, फ्लोरेनबारोस, क्रायोवा, अरारात, आर्मेनिया, ओफी, सीएसके मॉस्को, रेड स्टार, प्लाजन, सिंट क्रूडन, ओमोनिया और बेनफिका एजीएफ के खिलाफ। यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग के लगभग 25 मैच हैं। लीग वन में भी एक मैच है आज, शेफील्ड वेंसडे अगेंस्ट ब्राडफोर्ड। स्पेन के ला लीगा में रायो वालिकानो का मुकाबला अलावे से होगा। उधर कोनमेबोल लिबर्टाडोरेस के लास्ट 16 में आज सुबह फ्लामेंगो ने 2-1 से क्रूजेरो को हराया। ऑन एग्रीगेट फ्लामेंगो की टीम क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो इतना कुछ फुटबॉल के बारे में। ये भी बता दें आपको कि क्रिकेट में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मैच अभी खेला जा रहा है। 171 रन पर पाकिस्तान को ऑल आउट किया इंग्लैंड ने, और इंग्लैंड की टीम अभी 112 रन बनाकर खेल रही है। सेशन अभी रुका हुआ है क्योंकि बारिश हो रही है इंग्लैंड में, तो वहां से बारिश इधर भी भेज दो ताकि यहां रिजर्व वो भर जाए। वहां पर कह रहे कि बारिश मत आओ, लेकिन बारिश आ रही है। एनीवे, मॉरिशस में बीच वॉली के बारे में चर्चा कर रहे थे। अफ्रीकी चैंपियनशिप में मॉरिशस से 3 बार जीत पाई लीजा बोन और जोवानिता लातू। वो अपने ग्रुप के पहले पोजीशन पे आए। कल उन्होंने केन्या के सेलिना गाम्बो और इवन वाविन्या को हराया 2-7 से। अब ये लोग अपने ग्रुप एफ में पहले आएंगे, बेस्ट ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई

0: हो गए हैं। घुड़दौड़ की बात करें 13वां सप्ताह 13वें जूने अब रविवार को लगेगा, रविवार 23 अगस्त को, क्योंकि कहा जा रहा है मौसम शायद खराब होगा और सप्ताह के दौरान मौसम खराब था इसीलिए वहां पर सुविधा दी जा रही है ताकि इसको संडे को रखा जाए। सो द मॉरिशस डर्बी ये 1850 मीटर की रेस मेन रेस होने वाली है। सो गेट रेडी फॉर द प्रीमियरशिप एक्शन फ्राइडे से शुरू। कल आर्सेनल वर्सेस कोवेंट्री, प्रीमियर लीग टाइटल जीतने वाली टीम खेलेगी अगेंस्ट लीग चैंपियन, लीग चैंपियनशिप चैंपियन और मैनचेस्टर यूनाइटेड। सैटरडे का पहला मैच उसका होगा हल सिटी के खिलाफ। तो अब फिर से पुलिंग द लेग्स शुरू होगा।
1: बिल्कुल जी रोज जब आप सुनेंगे तो रोज आई विल बी पुलिंग माय लेग्स एंड खुशी खुशी हम बर्दाश्त कर लेंगे।
0: लेट्स पुट इट देयर, यूनाइटेड लीग टाइटल जीतेगा इस बार। professionals pandit football pandit jise kehte hain 23 out of 26 they are going for Arsenal.
1: Theek hai aur hamare nok jhuk to chalte rahe. Thank you so much bro,
0: welcome.
2: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
3: Aaja ve aaja hai sajan mainu lut le gaya hai.
4: Radio Musti.
5: Your life is not complete until you have a little Musti in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
4: Radio Musti.
1: खूबसूरत गानों का ये सिलसिला बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में ऑन आवर टू रेडियो मस्ती। थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए। 4:45 हो चुके हैं एंड जस्ट लाइक एवरी टाइम गिनी जब भी आती है तो खाली हाथ लेकर नहीं आती है, हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ, यानी कि आई हैव गॉट अ कैडू फॉर यू राइट नाउ राइट अवे माय डियर लवली पीपल। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के लिए जस्ट रिमाइंड यू द गेम इज पावर्ड बाय ticketbox.mu. So just close your eyes and let the music take you on a journey. Bilkul, a journey filled with melodies, memories and timeless voice of Shaan. Of course, inke gaane ko kaun pasand nahi karta hai. Aur abhi ke liye on RMT Radio Masti is giving you the chance to experience this magic live. So you can play with RMT Radio Masti and stand a chance to win a gold ticket right now to assist the spectacular Shaan live concert. One voice, one stage, one unforgettable night. At SVICC on the 5th of September 2026 as from 8 PM, proudly organized by ticketbox.mu. पूछेंगे एक बहुत ही आसान सा सवाल, आपको बस सही जवाब देना है on 5499-1294 पर 5499-1294. तो चलिए जी हम आपको सुनाएंगे एक गाना, आपको बस मुझे बताना है कि ये जो गाना है कौन सी मूवी से लिया गया है। This beautiful song, it's in the lovely voice of Shaan Wajid, Dieter Suzy and Clinton. So you just have to tell me it's taken from which movie. 5499-1294, full name, full address ke saath. Send me the right answer. Best of luck to you, my dear.

0: रेडियो मस्ती।
1: सिकम के लोन्स और लीसिंग सुविधा के माध्यम से आप सब अपन सब खोजे के बिना कोनो चिंता के पूरा करे। सिकम के ग्रीन लोन जुनबा वो तोहरा एगो ऐसा जीवन शैली अपनाए खातिर वित्तीय सहायता देवेला जो जस्सी इकोलॉजी खा। इसे हमने के जोली टापू के भी फायदा होई। जस्सी जानकारी खातिर आज ही सिकम से संपर्क कर या हमने की वेबसाइट sikkim.mu पर जाइए। इमे नियम आशर्त भी लागू बा। सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
3: TechMag, powered by
2: 365. Bien plus encore.
4: Many countries are still expanding their 5G networks, yet researchers are already preparing the next generation of mobile technology, 6G. Unlike previous generations, 6G isn't expected to focus only on faster internet speeds. Researchers are developing networks capable of supporting autonomous vehicles, smart cities, advanced robotics, and even new technologies that will allow wireless networks to better understand and interact with their surroundings. Although 6G is still several years away, the research taking place today will shape how we communicate and connect in the future. Just as 5G transformed mobile connectivity, 6G could redefine what's possible in the digital world.
3: TechMag was powered by
2: 365. Bien plus encore.
0: RM2
5: Radio Musti.
6: Kuch kuch hota hai Rahul, tum nahi samjhoge.
7: Ladki badi anjaani hai.
5: Radio Musti, all the way.
8: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
2: Such beautiful and lovely, lovely गाने लेकर आए हैं, just to pump up a little bit your lovely mood on this lovely Thursday afternoon. जी है, हाँ जी दोस्तों, देखा जाए तो ये हफ्ता भी कितने जल्दी जल्दी बीता चला जा रहा है. And well, what we have to do, just live and live happily and keep on spreading happiness the same way I am doing it right now, right away. जी हाँ दोस्तों, जैसे इन खूबसूरत गानों के जरिए आपकी जिंदगी में ये खुशियाँ हम भर देते हैं और लेकर आते हैं कुछ ऐसे कैडोज, यानी कि we have some lovely gifts for you every afternoon. So और क्या चाहिए while listening to your number one radio station. पूछा गया था एक बहुत ही आसान सा सवाल, डू यू वांट अ पार्टनर ओ पार्टनर, पूछा था ये कौन सी मूवी से लिया गया है. एंड यस, द राइट आंसर इज फ्रॉम द मूवी पार्टनर. जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक्चुअली यू आर विनिंग अ गोल्ड टिकट टू असिस्ट द स्पेक्टेक्युलर शान लाइव इन कॉन्सर्ट ऑफ द वन एंड ओनली सिंगर ऑफ बॉलीवुड विच इज गोइंग टू हैपन वेरी सून, यानी कि एट एस वी आई सी सी एट पाई ऑन द 5th of September 2026 रात के 8 बजे से लेकर. एंड इट्स प्राउडली ऑर्गेनाइज बाई टिकट बॉक्स डॉट एम यू. सो शान जो है, ही इज़ वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट बिलव प्लेबैक सिंगर्स, नोन फॉर हिज स्मूथ सोलफुल एंड वर्सटाइल वॉइस. ही रोज टू प्रोमिनेंस इन द लेट 1990s एंड बिकेम अ फैमिली वॉइस इन बॉलीवुड थ्रू रोमांटिक मेलोडिक एंड हाई एंड फील गुड गाने. Over the years, Shan jo hai, unhone delivered kiya hai numerous memorable hits across Hindi cinema and even Indian pop music, earning a strong fan following across generations and generations. Unki jo warm vocal style hai, faultless hai stage, jo presence hai and ability to connect emotionally unke audiences ke saath have made him a popular live performer. Ji haan, enjoy the charismatic energy, soulful voice and timeless melodies of Shan live on the SVICC stage on the 5th of September 2026. 6 hours from 8 p.m. and the game actually was powered by ticketbox.mu. Or as usual on Radio Masti, हम हमेशा gift लेकर आते हैं. So who is going to win this gold ticket? सवाल हमने पूछा था कि who is which movie it was taken from this beautiful song. And yes, the right answer is a partner. और आज का हमारा lucky winner है. Lucky draw निकालने के बाद Selvina Ramkilawan जो रहती हैं Centre de Flac. So congratulations to you, Selvina Ramkilawan from Centre de Flac. You are winning a gold ticket to assist the spectacular Shan live in concert in Mauritius. Of course, one voice, one stage, unforgettable night you are going to assist on the 5th of September 2026, raat ke 8 baje. So congratulations to you, my dear. There will be someone calling you from the MBC to let you know when you can come with your ID card to collect your ticket. Thank you so much to all those who have participated kiya hai, but unfortunately one lucky winner. And a big hi, and this beautiful song goes out to all fans of the great singer Shan and to all those who are watching us live on TikTok or M2 Radio Masti.

0: बिल्कुल जी, शबस म्यूजिक सुनते रहे और RM2 रेडियो मसीहिया का साथ यूं ही देते रहे। अभी तो 5:09 हो चुके हैं, सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार और गणेशा का प्रणाम वंस अगेन, वेलकम बैक इन द सेकंड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो, दैट्स योर रफ्तार वाइब्स विद मी राइट। सो आफ्टरनून का सीन समझ सकते हो ना, ऑफिस से निकल चुके हो तो ऑफिस का जो स्ट्रेस है ना, आप उसको पीछे छोड़ देना और अब मिशन एकदम सिंपल है। बिल्कुल जी, आपका मिशन एकदम सिंपल है, घर पहुंचना है और रिलैक्स करना और अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनते रहना है। वैसे आज का दिन कैसा भी रहा हो, बॉस ने परेशान किया हो या आपने उनको परेशान की, ये मुझे नहीं पता। ट्रैफिक ने पेशेंस टेस्ट किया हो या काम ने एनर्जी जो है आपका खा लिया हो, अब सब कुछ जस्ट लेट इट गो माय डियर। आज जो आप कर रहे हो ना, सब कुछ छोड़ दीजिए, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, शोल्डर्स को आप रिलैक्स कर लीजिए और हमारे अगले गाने को आप एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि दिस इज योर लिटिल आफ्टरनून एस्केप, योर रफ्तार वाइब्स विद मी गिनीश ऑन RM2 रेडियो मस्ती। थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा रिदम और एक ब्यूटीफुल गाना जो मूड को एकदम फ्रेश कर देगा। बिल्कुल जी, सो माय लवली लवली म्यूजिक लवर्स, होम बाउंड क्रू जितने भी हैं, आर यू रेडी टू फॉर द नेक्स्ट वन? चलो वरीज को म्यूट करो और म्यूजिक को जो है अनम्यूट कर लीजिए और just bring some sunshine in this beautiful afternoon. And the next one goes out to you and everyone who just want to watch the show live on TikTok. It's happening on TikTok, RM2 Radio Musti.
1: Un bon petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et les vies plus agréables avec un bon dipi à pistache. Rapid Peanut Butter, un produit premium, 0% cholestérol, 0% transfat et riche en protéines. Qui dans ce l'emballage bleu crunchy ou l'emballage rouge creamy, ou pour régaler avec Rapid Peanut Butter. Rapid Peanut Butter, a premium product at half the market price. Importé et distribué par RR Rapid Services Limited.
2: Tamam Deals, il arrive coûte métrique. Pas croise, pas rêvé. Du 14 au 31 août, profite jusqu'à 50% discount. Oui, vous êtes une bien attendée. Carreau, robinet et sanité à top qualité avec du rat, 50 tranquillité. Tamam Deals là, tamam même ça. Métrique, une enseigne du groupe KRMG.
3: RM2
4: Radio Musti.
5: Raftar Vibes. Filmy Rides.
3: RM2

कहाँ तक पहुँचे हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स। आई नो आप थके हुए हो या थिंकिंग कि अभी जल्द से जल्द ये जो हफ्ता है खत्म हो जाए तो अच्छा लगेगा। डोंट वरी, आज तो थर्सडे है, 28th August 2026। अगर आप अभी काम से घर जा रहे हैं, एक छोटी सी बात हमेशा याद रखना कि लाइफ में हर दिन परफेक्ट नहीं होता है, बट हर दिन में एक अच्छी चीज जरूर होती है किसी ना किसी के साथ।

कभी कभी हम इतना फोकस करते हैं कि जो हमारे पास नहीं है, कि जो ऑलरेडी हमारे पास है उसकी वैल्यू भूल जाते हैं। तो टुडे घर जाते वक्त थोड़ा स्लो डाउन करो, अपने आप को क्रेडिट दो। जो चैलेंजेस आए हैं आपने फेस किए हैं लाइफ में, जो काम कंप्लीट किया है उसके लिए प्राउड फील करो ना। और अगर आज का दिन डिफिकल्ट था तो दैट्स ओके, ओके माय डियर। एक बैड डे जो है डजंट मीन यू हैव अ बैड लाइफ। कल एक नया चांस है, एक फ्रेश स्टार्ट है, और हर किसी जर्नी जो होते हैं ना डिफरेंट हमेशा होता ही रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने लोगों के लिए टाइम निकालो, अपने लिए टाइम निकालो, और छोटी छोटी खुशियों का एंजॉय करना मत भूलो, उसको एंजॉय दिल से कर लीजिए। और हम जैसे हमेशा बोलते हैं ना कि नो वरीज, अब वरीज को थोड़ा साइड में रख दीजिए, घर की तरफ जाते हुए एक स्माइल रखे, और लेट दिस ब्यूटिफुल अपकमिंग सॉन्ग रिमाइंड यू बेटर डेज आर ऑलवेज पॉसिबल। तो चलिए अगला गाना आपके लिए।

शाम तो माइक साथ देने के लिए योर रफ्तार वाइब्स योर फिल्मी राइट्स जी हाँ अभी फिलहाल के लिए 5:55 हो चुके हैं जी गुद गुद गाने इसलिए हम चला रहे हैं ताकि आप लोग एकदम रिलैक्स फील करें एंजॉय करें ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस अभी के लिए बस आपको याद दिला दे थोड़ी देर बाद हम भरेंगे 6 के समाचारों की और उसके बाद तक गुड म्यूजिक ऑलवेज कंटिन्यूज आपके और हमारे बीच में ऑन रेडियो मस्ती

0: पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। ये एक सच्चाई बन गई है, भारतीय सरकार के साथ G2G समझौता तय हो गया। मॉरिशस ने पेट्रोली पैदावारों की सप्लाई को सुरक्षित कर दी। आज दोपहर बाद पोर्ट लुई में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और भारत के पेट्रोल और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में दस्तखत समारोह लगाया गया। नवीनीकरण और टेक्नोलॉजी को मजीद बढ़ावा देने के लिए बैन में एक नई प्रयोगशाला का उद्घाटन। ये लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है जो नौजवानों को प्रेरणा देगी। मॉरिशस के 14 फिशरीज पोस्ट में मत्स्य मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। कलमीबर्ग में स्थानीय मछुआरों को सुरक्षा सामग्रियां दी गई ताकि मछली मार का समर्थन किया जाए। और कैमरून की सरहद के पास जाम्बोई खान के नजदीक एक भूस्खलन पेश आया और सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। नमस्कार, आदाब। समाचार अब तफसील से। ये एक सच्चाई बन गई है, भारतीय सरकार के साथ एक समझौते के जरिए मॉरिशस ने पेट्रोली पैदावारों की सप्लाई को सुरक्षित कर दी। आज दोपहर बाद पोर्ट लुई में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और भारत के पेट्रोल और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में दस्तखत समारोह लगाया गया। G2G प्रोटोकॉल संधि का मकसद देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने स्पष्ट किया कि इस पहल से लंबी अवधि का विजन आम हुआ है। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
1: The signing of this memorandum is of strategic importance for Mauritius, one that will above everything else safeguard our energy security, reinforce the resilience of our economy, and further strengthen the bonds of trust and solidarity that indissolubly unite our two nations. On behalf of the government and the people of Mauritius, let me reiterate our deepest appreciation to Prime Minister Narendra Modi for his personal commitment to strengthening the Mauritius India partnership. For Mauritius, this MOU arrives at a particularly critical juncture when global energy markets are beset by unprecedented volatility. India is once again manifesting its unwavering commitment to the prosperity and resilience of Mauritius. The agreement we signed today embodies the translation of political resolve into tangible outcomes. As Prime Minister of Mauritius, I solemnly reaffirm my government's commitment to deepening the special and strategic partnership between Mauritius and India, rooted, as I've said, on solid anchors of history, shared values, trust, and solidarity.
0: Bharatiya Pradhan Mantri Hardeep Singh Puri ne kaha ki is sandhi se dono rashtron ke bharose ki gawahi milti hai, unhe sunte hain.
2: Mauritius's fuel security now

0: will not rest on the uncertainty of tenders, but on the assurance of a 5-year supply commitment from Indian Oil Corporation, covering the entirety of Mauritius's import requirement. This is, in fact, the first agreement of its kind that an Indian public sector oil company has concluded anywhere outside South Asia. India is not merely energy self-sufficient, but also a net exporter of refined petroleum products to the world. We do not see this capacity as ours alone. We see it as a responsibility to stand as a dependable, transparent, and stable source of energy for our friends and partners across the world.
1: नवीनीकरण और टेक्नोलॉजी को मजीद बढ़ावा देने के लिए बन में एक नई प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। ये लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती हैं। रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से ये प्रयोगशाला मुर्शिद नौजवानों को अपनी परियोजनाएं विकसित करने की संभावनाएं देती हैं। अना बेलवुलबेर की रिपोर्ट पर ये विवरण।
2: इस सुसज्जित कमरे में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की किट्स मौजूद हैं। ये प्रयोगशाला, जिसे मॉरिशस में अपनी तरह की अनोखी प्रयोगशाला बताया जा रहा है, मॉरिशस के अधिकारियों और स्टेम पावर नामक गैर सरकारी संगठन के सहयोग से स्थापित की गई है। ये संगठन विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में कौशल विकसित करने के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को स्टेम से जुड़े क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। आज मॉरिशस में शुरू की गई ये प्रयोगशाला युवाओं के लिए प्रयोग, सृजन और नए विचारों को विकसित करने की जगह के रूप में काम करेगी। आईसीटी मंत्री अविनाश राम तोहल कहते हैं, इस लैब में करीब 24 कंप्यूटर हैं, जो एक सर्वर से नियंत्रित हैं, कई उपकरण हैं, ठेकेदार, टेक्नोप्रेन्योर, कॉलेज के छात्र और यूनिवर्सिटी के छात्र तथा खोजकर्ता अपनी पैदावारों की जांच यहां करने आ सकते हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को उन तकनीकों तक सीधी पहुंच देना है, जिनके बारे में वे अक्सर पहले किताबों या केवल सैद्धांतिक रूप से सीखते हैं। ये तरीका कुछ छात्रों को पहले से ही पसंद आ रहा है। इंपीरियल कॉलेज के लेक्शान जावन कहते हैं, इस लैब से छात्रों को लाभ होगा। जिनके पास विचार हैं, वे अपनी परियोजनाओं को साकार कर सकते हैं, लेकिन इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध उपकरणों का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। आईसीटी मंत्रालय में एआई यूनिट के अधिकारी रामा कृष्णा मुडालिया कहते हैं, एक ऑनलाइन सिस्टम है, लोग एक स्लॉट बुक कर सकते हैं, यहाँ आकर वे अपना काम कर सकते हैं, मार्गदर्शन मिलेगा, वे एआई आर्टिफैक्ट्स रच सकते हैं और जीवन तथा समाज की समस्याओं से निपट सकते हैं। एबेन स्थित ये प्रयोगशाला छात्रों, टेक्नोप्रेन्योर और शोधकर्ताओं के लिए खुली रहेगी। फिलहाल ये सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुली है और आने वाले समय में इसके समय को बढ़ाने की योजना है।
1: मॉरिशस के 14 फिशरीज पोस्ट में मत्स्य मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। कलमीबाग में स्थानीय मछुआरों को सुरक्षा सामग्रियां दी गई ताकि मछलीमार का समर्थन किया जा सके। वहां पर मौजूद मंत्रियों और इलाके के सांसदों ने मछुआरों का समर्थन करने और उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए मुख्तलिफ सहायक योजना का उल्लेख किया। ये जानी कि देश में 2000 से ज्यादा माहीगीर हैं।
2: मेबक गांव में सबसे ज्यादा मछेरे हैं। यहां 400 से ज्यादा पुरुष और महिलाएं सीधे इसी काम से अपनी आजीविका चलाते हैं। औरजिना सीमा किस्तु कहती हैं, ढाई साल हुए हैं फिशिंग कार्ड मिला है। ये एक आसान पेशा नहीं है, हर रोज समुद्र में नहीं जा सकते। जॉन तुरेत कहते हैं कि वे 50 से ज्यादा वर्षों से मछली पकड़ते हैं, ये एक अच्छा काम है। नौजवान मछेरों से अच्छी तरह ये काम करने की मांग करते हैं। इस क्षेत्र में ये पेशा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता आया है। जॉन गायल जिली कहते हैं, उनके बड़े लोग मछेरे थे, अब वे भी ये काम करते हैं। खराब मौसम में समस्याएं होती है, तब वे अपनी जालें ठीक करते हैं। जय हरलाल कहते हैं कि 40 से ज्यादा सालों से वे मछली पकड़ते हैं, परिवार में सभी लोग मछेरे थे। मंत्री अरविंद बुलेल बताते हैं, इन लोगों के पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर है, वे मछली पकड़ सकते हैं, ऑयस्टर की पैदावार कर सकते हैं, आल्गे की पैदावार कर सकते हैं। मछेरा समुदाय के लिए भारी संभावनाएं हैं, सहायता कदम भी हैं। 65 साल की उम्र में उन्हें पेंशन मिलता रहेगा और वे अपना काम भी कर सकते हैं।

0: दुर्घटनाओं को रोकने और समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कूलर बॉक्स, फर्स्ट एड किट और आपातकालीन संकेत उपकरण वितरित किए गए। जूनियर मंत्री फैब्रिस दाबिद कहते हैं, स्पीड बोट का इंजन बदलने के लिए मंत्रालय 50,000 रुपए दे रहा है, DBM 1,00,000 रुपए तक का लोन दे रहा है। कुल 2483 मछेरों के साथ समुद्र स्थानीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बना हुआ है। सरकार का लक्ष्य इस महत्वपूर्ण गतिविधि का टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना है, जो तटीय समुदायों के लिए बहुत ही जरूरी है।
1: माधवी जगन्नाथ की रिपोर्ट पर विवरण गीता सुनारान का रहा। जानवरों की भलाई के लिए कोशिशें ठोस की जा रही हैं। गैर सरकारी संगठन काछिलापात आज सुबह सेंट मेरीज कॉलेज में गया था ताकि छात्रों को जानवरों की इज्जत करने, उनका दर्द समझने और उनकी देखभाल करने के लिए आगाह किया जा सके। अंजू राम गुलाम की रिपोर्ट पर यह विवरण।
0: सेंट मेरीज कॉलेज में दोस्तों के साथ कुछ समय बिताने के बाद ये छात्र एक खास सत्र में भाग लेने वाले हैं। काछिलापात गैर सरकारी संगठन की ओर से एक लघु सत्र का आयोजन किया गया। यहाँ मौजूद लोग अपनी आवाज बुलंद कर जताना चाह रहे थे कि जानवरों के प्रति लगाव है। लोग जोरा की ओर इशारा कर रहे थे और वो अपने प्रति इतना प्रेम लगा पाकर खुशी है। जोरा को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी और इसे पेट के पास वाले हिस्से में काफी चोटें भी लगी थी। उसे डायपर्स भी पहनना पड़ता है। अब उसके लिए एक छोटा सा इंतजाम भी कर लिया गया है इनके छोटे छोटे पंजों की जगह पर।
2: Zora, c'est une chienne handicapée qui rentre dans nous la vie il y a deux mois. Qui fait une amélie, c'est pour montrer aux enfants du collège et la direction qui nous remercie d'ailleurs, qui la responsabilité, c'est quotidien quand on occupe des animaux.
0: Kathin, aur alag alag sthitiyon ka samna karte hue, jaise taise Zora ka jivan chal raha hai. Wo hai himmat, taqat, jeene ki chah rakhne wale mazbooti ka prateek.
3: Les chiens handicapés, ça me touche. Et j'ai deux chiens.
4: Qu'est-ce que tu as pensé de Zora?
3: Les conducteurs sont méchants.
0: Vidéo chalaya gaya, jise yahan maujood log dhyanpurvak dekh rahe the. Shirshak, Nizami le chien, kutton par aadharit. Netflix mein iska prasaran ho raha hai. Naam hai La paroisse des chiens errants. ये पादरी गोमेज के लिए समर्पित हैं, जो अगले 1 अक्टूबर महीने में मॉरिशस आएंगे। कल के वयस्क बनने वाले आज के इन नौजवानों के लिए इसी संदेश पर जोर, जानवरों की रक्षा करें। ऐसी जान जो बिना किसी शर्त के सिर्फ देते ही है, लेकिन कई बार मनुष्य के रहम पर जीते हैं। ये अभी केवल शुरुआत ही है जागरूकता अभियान के लिए।
2: Faire une invitation, nous sommes déjà invités à notre école si vous êtes intéressés pour nous faire la conscientisation sur la maltraitance animale. Pas hésiter, prendre contact avec nous.
0: नौजवानों को ये जानने का भी मौका मिला कि किसी दुर्घटना के चलते ये जानवर जख्मी हो जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ते रहने, जीवन जीने की चाह मरती नहीं। ये बात जोरा की समझ में आ ही गई। ऐसे में इनाम के तौर पर वो एकाध बिस्कुट की हकदार तो जरूर है ना?
1: 18 सालों के बाद पोर्ट लुई थिएटर फिर से कार्यरत होने लगा है। निर्माण कार्यों के लिए काफ़ी वक्त लगा और इस परियोजना के लिए 500 मिलियन रुपए लगे हैं। इस परियोजना के सफर पर ये विवरण।
0: पहला अध्याय 2008 में शुरू होता है। पोर्ट लुई का थिएटर अपने दरवाजे बंद कर देता है। करीब 200 साल पुरानी ये इमारत समय के साथ जर्जर हो चुकी थी। चूहे और दीमक भी इसे नुकसान पहुंचा रहे थे। पोर्ट लुई नगरपालिका के अनुसार ये इमारत सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी थी, लेकिन इसके पुनर्निर्माण के लिए नगरपालिका के पास सिर्फ 50 मिलियन रुपए थे, जो इतने बड़े काम के लिए काफी नहीं थे। करीब 10 सालों तक स्थिति ऐसी ही बनी रही। 2018 में जाकर पहली बार काम शुरू हुआ। ये पहला चरण इमारत को मजबूत करने पर केंद्रित था। ये काम 2020 में पूरा हुआ, जिसकी लागत करीब 100 मिलियन रुपए थी। इस काम में फ्रांसीसी विकास एजेंसी ने भी सहयोग दिया। भूषण रामलोल कहते हैं,
5: Le théâtre de Pauli, le grand floor du théâtre de Pauli, il est situé sous le niveau de la mer. Donc,
0: थिएटर का ग्राउंड फ्लोर समुद्र के जल स्तर के नीचे है। हमें फिर से एक बेसमेंट बनाना पड़ा। एक बंकर भी बनाया गया ताकि जब पानी ऊपर चढ़े तो उसमें न भरे। छत पूरी तरह सड़ गई थी, उसे पूरी तरह फिर से बनाया।

0: बनाया गया उन्हीं लकड़ियों से जो पहले से वहां मौजूद थी। दूसरे चरण के शुरू होने से पहले 3 साल बीत गए। जुलाई 2024 में भूषण रामलोल की अगुवाई वाली अभी कंस्ट्रक्शन को दूसरे चरण का ठेका करीब 400 मिलियन रुपए में मिला। इस बार मकसद सिर्फ इमारत को बचाना नहीं बल्कि उसके पुराने गौरव को वापस लाना था। सुनहरी सजावट, बालकनियां और 1850 की डोम को उसके मूल रूप में फिर से चमकाने का काम किया जाना है। डोम को फिर से बनाने के अध्ययन के लिए करीब 25 मिलियन रुपए का बजट था। हमने काफी बचत की और इसमें करीब 15 मिलियन रुपए खर्च किए। कुल मिलाकर पोर्टविस थिएटर के पुनर्निर्माण की लागत अब करीब 500 मिलियन रुपए तक पहुंच गई है। सभी तरह की समस्याओं के साथ साथ कई चीजों पर फिर से ध्यान दिया जाना चाहिए था। अब आखिरी अध्याय की तैयारी चल रही है। थिएटर को पहले अगस्त 2025 में दोबारा खोलने की घोषणा की गई थी। अब इसके सितंबर 2026 में खुलने की उम्मीद है। लॉर्ड मेयर कहती हैं, अगर निर्धारित अवधि यानी अगस्त के आखिर तक ये मिल जाएगा तब सितंबर तक ये कार्यरत हो जाएगा। करीब 2 दशकों के इंतजार के बाद पोटरी थिएटर आखिरकार एक बार फिर अपना पर्दा उठाने की तैयारी में है।
1: कैमरून की सरहद के पास जाम्बोए खान के नज़दीक एक भूस्खलन पेश आया और सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है जो खान में काम करते थे। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक ये खान गैर कानूनी तरीके से कार्यरत था, इसी वजह से वो खतरनाक था। अभी तक लाशों को निकाला जा रहा है। केंद्रीय अफ्रीका में कोलेरा का फैलाव होता जा रहा है। कैमरून और चाद में इस बीमारी की वजह से सैकड़ों मौतें दर्ज हो रही हैं। साफ पानी नहीं है और स्वास्थ्य ढांचों की कमी है, इसी वजह से इलाज मुनासिब नहीं है। प्रभावित इलाकों में अधिकारियों ने फैलाव को रोकने की कोशिश की लेकिन जीवन स्थिति वहाँ अच्छी नहीं है। यूक्रेन की राजधानी में रूसी हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है और 40 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कीव में हवाई प्रतिरक्षा मिसाइल कम होते जा रहे हैं। और अमेरिका में राष्ट्रीय कर्ज 1 दशक में $40 ट्रिलियन का हो गया है। वजह यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के शासनों के दौरान बहुत खर्च किए गए और सूद दर भी काफ़ी बढ़ गए थे। सन 2016 में राष्ट्रीय कर्ज $20 ट्रिलियन से कम था। और अब करते हैं स्थानीय मौसम की बात। आम हालत हमारे इलाके में कुछ अस्थिर बादल हैं और आज रात से स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए मौसम की पेशगोई, आज रात मौसम सुहाना रहेगा। रात के दौरान और कल सुबह पूर्व और सेंट्रल प्लेटू में बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। कल दोपहर बाद बारिश होगी खासतौर पर पश्चिम में और हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समंदर चंचल रहेगा, 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। इसी वजह से दक्षिण पश्चिम में न जाने की सलाह दी जाती है, वहां ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटू में न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 22 से 24, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:28 पर सूरज उगेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इस बुलेटिन आप तक पहुंचाने में हमें समाचार और फ्रेंच विभागों की मदद मिली है और हमारे टेक्निकी साथ ही लुडोविक जोहांगिया की सहायता भी मिली है। नमस्कार, आदाब। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे।

0: जीना चिकोई, श्रीमती जीना चिकोई, पैदाइशी नाम अलीगन, जो पूजा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल एक बजे। कल एक बजे इनके पति राजेश टिकोई के घर बिरला रोड कॉटेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए काहुआ कासिया कॉटेज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। परमिशन टुमारो एट 1 PM। श्वेनफिल्ड रोड रिविया जो में 78 साल की 78 years old बीबी सुलमा रोजेद, मोहतरमा बीबी सुलमा रोजेद, पैदाइशी नाम बोला, जो सुलमा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज रात नौ बजे इनके घर श्वेनफिल्ड रोड रिविया जो से उठाकर दफनाने के लिए पॉइंटेलास्को का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 9 PM। बॉम्बू स्ट्रीट मेबर्ग में 76 साल के 76 years old श्री वाल्मीकि देवी, श्री वाल्मीकि देवी जो आनंद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल 11 बजे। कल 11 बजे के घर बॉम्बू स्ट्रीट मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो लेन मेबर्ग की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। परमिशन टुमारो एट 11 AM। नंबर 7 कॉन्क्रेल अल्बियों में 81 साल के 81 years old श्री रंजीत सिंह बायरू सिंह, श्री रंजीत सिंह बायरू सिंह जो शेखर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई हैं अर्थे कल दो बजे इनकी पत्नी बसंती बायरू सिंह के घर नंबर 7 कॉन्क्रेल अल्बियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिशलियो पेटिट रिविया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टुमारो एट 2 PM। एवेन्यू डी सैबलों ग्रिनी फ्रांस में 61 साल के 61 years old श्रीधर्मराज चितामन जो सुनील के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी मंगल 25 अगस्त को दिन के 11 बजे इनके घर ग्रिनी फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रिनी फ्रांस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन ऑन ट्यूजडे एट 11 AM। SSR रोड कोची मिलिटिया में 77 साल के 77 years old श्री राजेंद्र तिलकधारी जो राजन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके घर SSR रोड कोची मिलिटिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वीरमय की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2.

0: 6:26 हो चुके हैं. वेलकम इन द थर्ड आवर ऑफ योर रफ्तार वाइब्स ऑन आवर टू रेडियो मस्ती. सो विशिंग एवरीवन अ वेरी गुड इवनिंग. नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम. तो चलिए जी, अगला गाना खास कर आपके नाम.
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: जहां पे गिनी आपको लेके जाती है ऑन फिल्मी राइड्स। 6:29 हो चुके हैं आज थर्सडे 28th of August 2026। टू ऑल दोस सेलिब्रेटिंग देयर beautiful day today, I just want to wish you a magical one on RMT Radio Mercy. And if you're celebrating something special, to well, aap hamare saath share kar sakte hain. So why not? The number is 5499-1294 par. Aur agla gana jo hai, specially hum some special logon ke liye dedicate karna chahenge jo abhi drive kar rahe hain. Mr. Chris, this one goes out to you, my dear, and especially for you, my beautiful Deepu. Congratulations to you, my beautiful. It's a very, very important day of your life. And always remember, लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, हम हैं ना आपका साथ देने के लिए. सो बोथ ऑफ यू एंजॉय दिस वन.
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: That was such a beautiful track, especially for you on RMT Radio Masti. To chaliye ji saath mein, let's check it out. Kisne kisko yaad kiya hai? I've got your dedications on 5499-1294 par. And we do have Jana, jo dedicate karna chahenge agla gana. Reema, Janita, Shishtan, Sini, Sylvia, UV, Krishi, Susan, Parivar ke liye from Flak. Thank you so much. And yes, sweetheart, even I love you. Thank you. And Lalita Jitun, ye agla gana aapke sare families ke liye. And I love you too. Thank you. Aur ye agla gana especially goes out Badwag BDC जी के लिए. एंड किसी ने पूछा कैसे हो आप अजय कुमार जी, हम बिल्कुल ठीक हैं. तो द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू एज वेल डी. द नेक्स्ट वन आपके हस्बैंड अवेश के लिए, प्यारी बेटियां मेघना एंड योशाना. एंड आप बिरयानी वेज पका रहे हो फ्रॉम पोम्बलॉन्स. कुराज टू यू एंड बोन अपेटी टू यू इन एडवांस माय डियर. एंड वेल वी डू हैव द नेक्स्ट वन हम डेडिकेट करना चाहेंगे फॉर यू करिश्मा जो साथ दे रही है. एंड रंजना, इंदरजीत, थैंक यू सो मच. एंड ईच एंड एवरीवन जो साथ दे रहे हैं An hour and two radio masti. To chaliye to all those jo already ghar pahunch chuke hain, aaram thoda farmaiye and then get back to your routine. Lekin abhi agar abhi tak drive kar rahe ho, so courage to you, drive carefully. And if you're at work, well, hum hain na saath dene ke liye. So bon courage to you all, my dear. Here we go. The next one goes out to all those who are truly, madly, deeply in love.

0: बटर
1: रेडियो मस्ती
2: नॉर्थ साउथ
1: 103.5
2: ईस्ट वेस्ट
1: 96.4
2: सेंटर
1: 99.4
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: घर मिलाते चलिए इट्स 7 PM.
1: Evening Lounge.
4: Evening Lounge.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: हम तो ये चाहते हैं कि आप भी हमसे कहें कि तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, और जब भी आप ये लाइन हमसे कहें तो आप खुशी खुशी यही कहें कि देखो हमारी हमारी ज़िंदगी में कितने पॉजिटिव चेंजेस आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमेशा जब आपकी आंखों में आंसू आए तो हमेशा खुशी के आंसू ही आए, बस गम को एक साइड रखिए। एंड गाना तो आपने सुना ही होगा, आंसुओं का चूरन चबा के हमने डकार मारा रे, और गम को आप एक साइड रख कर बस ट्राई टू फोकस ऑन योर हैप्पीनेस। और कहते हैं ना कि लो ऑफ अट्रैक्शन तब भी काम करता है जब आप अपनी खुशी पर फोकस करते हैं। और ज़िंदगी में कितनी सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें खुशी मिलती है और इनको हम जाने देते हैं, क्योंकि वी ट्राई टू सर्च फॉर अ बिगर हैप्पीनेस, या फिर हम ऐसे ही कुछ इवेंट या फिर अपॉर्चुनिटी या फिर ओकेजन का हम इंतज़ार करते रहते हैं कि कब ये बड़ा सा ओकेजन आएगा और हम हंसेंगे मुस्कुराएंगे साथ मिलकर, विल हैव सम गुड टाइम। लेकिन आपको इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इंतज़ार करेंगे तो बदले में आपको बस इंतज़ार ही मिलेगा। सो चलिए, यहाँ पर हम चाहते हैं कि आप हर एक अपॉर्चुनिटी को हर एक मौके पर चौका लगाए और ट्राई टू सीज दिस moment and try to make it very special. Actually, हम चाहते हैं कि आप इसको extra special बनाएं. 7:07 हो चुके हैं. It's a wonderful Thursday evening, 20 August. देखते ही देखते 20 दिन भी निकल चुके हैं इस महीने के. And I just hope कि इस महीने के अंदर जितने भी सारे आपके upcoming projects थे या फिर जितने भी आपने सपने सुन रहे हैं वो धीरे धीरे करके end of year तक साकार हो जाए. So चलिए, यहाँ पर दिव्या का साथ है कुछ ऐसी बातों के साथ और साथ में आपके प्यारे प्यारे messages के साथ एक इस शो को हम आगे बढ़ाते रहेंगे. Of course, waiting for your messages on the magical number, which is 5499-1294. 5499-1294 पर हम आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं.
1: Evening Lounge, Evening Lounge,
2: RM2,
1: Radio Masti.

Yeah, दोस्तों 7:19 to all those having their dinner right now. आप अपनी meal को जरूर हमारी beautiful गीतों के साथ enjoy कीजिएगा. Meal यानी कि खाने और गाने का एकदम perfect combination होता है. So I just hope that you are connected to Radio Masti, जहाँ पर आपको मौका मिल रहा है to listen some of the beautiful गाने. And चलिए साथ में यहाँ पर अगला गाना हम dedicate करेंगे specially to the lovely couple Ashish and Diya for their newborn baby, very cute daughter. And चलिए आपको मिनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फ्रॉम दादा संजीव, दादी अंजनी, आपकी ये पर दादी हैं भगवंती, सभी कालुआ, जमुना, अंजना, पिया फैमिली.

0: अगर आपको भी पता नहीं है कि आपके दिल को क्या हो रहा है तो शायद आपको भी प्यार हो चुका है। और कभी कभी क्या होता है ना कि दिल मानने को तैयार हो जाता है और दिल ही इस प्यार का एहसास कराता है, लेकिन बाद में दिल और दिमाग का एक जंग छिड़ जाता है जहाँ पर दिमाग कहता है कि नहीं नहीं शायद तुमको प्यार नहीं हुआ है, एंड दिल कहता है कि यही प्यार है और बस मेरी बात सुनो। एंड हम तो हमेशा कहते हैं ना कि दिल की ही सुनिए, क्योंकि दिल हमेशा सच ही कहता है और सही ही कहता है। आई जस्ट होप कि आप हमारे प्यार भरे गानों को सुनने के बाद यू आर एक्सपीरियंसिंग लव एंड मैजिक ऑल अराउंड। जब गुड म्यूज़िक का साथ हो तो माहौल अपने आप इतना पॉजिटिव हो जाता है और इतना खुशनुमा हो जाता है कि क्या कहें। सो इसीलिए हम चाहते हैं सिर्फ आप गाने सुनिए नहीं, क्योंकि बस आप गाने सुनेंगे तो इसमें आपको बस म्यूज़िक सुनाई देगा। अगर आप गानों को महसूस करेंगे तो उसमें आपको प्यार भी महसूस करने का मौका मिलेगा। सो बस प्यार को एक्सपीरियंस कीजिए और इसको फील कीजिए। एंड कहते हैं ना कि टू लव एंड टू बी लव्ड इज़ एवरीथिंग। बस अपने प्यार को थोड़ा सा बढ़ावा दीजिए एंड पंखों को उड़ान दीजिए, बाकी हम हैं आपको संभालने के लिए। ऑफ कोर्स ऑन 5499-1294 एक बार फिर से आपके मैसेजेस का हम इंतज़ार कर रहे हैं। वी वांट टू नो कि आप किस तरीके अपने इस थर्सडे इवनिंग को स्पेंड कर रहे हैं। कल सुबह उठेंगे तो यू आर गोइंग टू वेक विद अ वाइड एंड अ ब्रॉड स्माइल ऑन योर फेसेस, क्योंकि कल फ्राइडे है और इसका इंतज़ार सबको होता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप बस रिलैक्स कीजिए एंड कीप एंजॉयिंग द कूल म्यूजिक ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: Well, we have this beautiful track and the beautiful mesmerizing voices of Neeraj Sridhar and Javed Ali. प्यार में एक पल की जीत है, एक पल की हार है, लेकिन एंड में जीत प्यार का ही होता है. And I just hope हमेशा जीत प्यार का ही हो. And I just hope आपकी ज़िंदगी में आपका प्यार ऐसे ही सलामत रहे और दिन ब दिन आपका प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे. वैसे इस प्यार को बढ़ावा देने के लिए हमारे ब्यूटीफुल गाने हैं, इसलिए हम चाहते हैं सिर्फ आप गीत ना सुने बल्कि इस प्यार भरे एहसास को भी महसूस करें.

0: Radio Masti.
1: Well, well, welcoming you once again in the second hour of your evening lounge, जहाँ पर दिव्या का साथ है till 9 p.m. We have this beautiful gana taken up from the movie Dhurandhar. जाइए सजना and it's a beautiful one. कुछ गाने बस इतने खूबसूरत होते हैं कि ये दिल को नहीं बल्कि रूह को छू जाते हैं. आई गेस इट्स वन ऑफ दिस काइंड ऑफ सॉन्ग्स जो आप को सुनने को मिलेंगे अभी. एंड थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे तारीख महीने के बारे में और हमने यही कहा कि 20 अगस्त पलक झपकते ही इस महीने के 20 दिन ऐसे निकल चुके हैं. और जब हम तारीख और डेट के बारे में या फिर दिन के बारे में वक्त के बारे में बात करते हैं तो ये हम एहसास नहीं करते हैं कि कुछ लोग वेट करते हैं कि ये पल कब निकल जाए और उधर कुछ लोग इस बात का भी इंतज़ार करते हैं कि बस ये पल ठहर जाए और ये वक्त ऐसे ही हमारे साथ रहे. लेकिन क्या करें, ज़िंदगी की दस्तूर यही है कि ना ही वक्त ना ही किस्मत किसी के हाथ में है. कहते हैं ना कि किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा. सो जस्ट ट्रस्ट द परफेक्ट टाइमिंग. और ये गाना ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो इस वक्त शायद ड्राइव करके हमें सुन रहे हैं. मे बी आप उनमें से एक हैं जो बस यही दुआ कर रहे हैं कि ये वक्त ये पल ऐसे ही ठहर जाए.

0: चंदा की डोली में परियों की झोली में शहजादी आई मेरी। जब किसी को प्यार होता है इमेजिन कीजिए कोई आपको ये सारी लाइनें बोल रहा है या फिर बोल रही है। इट लुक्स अमेजिंग एंड इट फील्स सो अमेजिंग टू बी इन लव। स्पेशली जब कोई होता है आपको स्पेशल फील कराने के लिए, ऐसा लगता है कि बस बार बार वो आपको स्पेशल फील कराता रहे या फिर कराती रहे। एंड हमेशा हम कहते हैं ना कि प्यार का जो फंडा है इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको प्यार मिल रहा है तो बदले में आपको भी बहुत सारा प्यार देना चाहिए। एंड इट शुड बी रेसिप्रोकेटिव लव, जहाँ पर आप प्यार को ऐड करें, मल्टीप्लाई करें और बस इसको सोच सोच कर अच्छा महसूस करें। ये है प्यार। हमेशा हम कहते हैं ना कि प्यार का एक अलग डेफिनेशन होता है। जब आप दूसरों से पूछते हैं कि आपका लव डेफिनेशन क्या है तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ और कहेगा, लेकिन इट्स नॉट द डेफिनेशन ऑफ लव, यू डिफाइन द पर्सन यू आर इन लव। तो अगर आप कहते हैं कि प्यार बहुत ही प्यारा सा एहसास है, इसका मतलब यू आर इन लव विद द राइट पर्सन। तो चलिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी ज़िंदगी में कौन है और आपको कैसा महसूस करा रहा है। वेल, आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे ऑन 5499-1294। हेलो दिव्या, वाव ग्रेट सिलेक्शंस एज वेल, थैंक यू सो मच। Loving it and having a peaceful and relaxing evening. Thank you for your lovely songs. God bless from Deepika and Manish of Goodlands. Thank you so much, Deepika. It means a lot. Especially जब हम effort डालते हैं और आपके messages आते हैं, ये कहते हैं कि आपको गाने बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, दिल से आपको शुक्रिया। नमस्ते दिव्या, how are you today? I'm very very good. Thank you so much, रोशनी जी, आपका इस आपके इस प्यार भरे मैसेज के लिए। Very nice selection. Thank you. And you are requesting for the song हम सफ़र from the movie. सही आ रहा है, इफ़ पॉसिबल हम ट्राई करते हैं। वी डोंट प्रॉमिस, क्योंकि अभी के लिए हम फरमाइशी शो नहीं चला रही हैं, बट द नेक्स्ट ट्रैक विल ट्राई टू डेडिकेट इट फॉर यू एंड बाकी के सारे गाने आपके नाम भी। सो चलिए, ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए एंड टू ऑल दोज लिसनिंग टू अस राइट नाउ। अगर आपका भी मन हो रहा है हमें याद करने के लिए तो बेशक आपकी राह देख रहे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं ऑन 5499-1294।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
4: Radio Musti.

0: जाहिर सी बात है जिनसे आप प्यार करते हैं वही जिंदगी में सबसे प्यारा होगा या फिर सबसे प्यारी होगी. और सब लोग कहते हैं ना कि जिनसे हम प्यार करते हैं वो तो लाखों में क्या करोड़ों में एक हैं, और ऐसा ही होना चाहिए. मतलब जिनसे आप प्यार करते हैं रोज़ रोज़ अपने दिल की बात उन तक पहुंचाना, इट्स वेरी वेरी स्पेशल. और हम कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें प्यार करना तो आता है लेकिन जताना नहीं आता है. आप किस बात का इंतज़ार कर रही हैं? हम हैं यहाँ पर आपके इस मुश्किल काम को आसान करने के लिए. अपनों के नाम भेजे प्यारा सा पैगाम और देखिए किस तरीके से हम उसके उनके चेहरे पर एक हंसी लेकर आते हैं. एंड आपने प्यार किया है तो जताना भी पड़ेगा. ऐसी बात नहीं है कि आप बार बार एक्सक्यूजेज या फिर बहाने बनाकर ये कहे कि जताना भी नहीं आता और छुपाना भी नहीं आता. बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा. सो चलिए यहाँ पर थैंक यू सो मच दिल से आपके इतने खूबसूरत मैसेजेस के लिए. दिव्या का साथ है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती जहाँ पर चल रहा है आपका इवनिंग लाउंज. और यहाँ पर किसी ने हमें एक मैसेज भेजा है. कहती हैं हेलो जी, सो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, ग्रेट एंटरटेनमेंट. उर्मिला जी आप हैं इटली से. इट रियली रियली मेक्स अस फील सो स्पेशल कि आप लोग सात समुंदर पार रहने के बाद भी हमेशा हमसे जुड़ ही जाते हैं. और आपके मैसेजेस का आना इससे साफ झलकता है कि आप हमें कितना प्यार करते हैं. सो थैंक यू सो मच उर्मिला जी इतने प्यार से हमारा साथ देने के लिए. नेक्स्ट गाना गुजार स्पेशली फॉर यू एंड ऑल द वे फ्रॉम इटली टू ऑल दोज जो शायद आपको जानते हैं. यहाँ पर किसी ने हमें मैसेज भेजा. कहते हैं सांसें थम जाते हैं पर जा नहीं जाती, दर्द होता है पर आवाज़ नहीं होते. अजीब है लोग इस जहाँ में, कोई बोल नहीं पाता और कोई याद नहीं आती. दैट्स रियली स्पेशल एंड रियली सच अ स्वीट मैसेज. आकाश चेतन मनसुख आप हैं बॉम्बू से. विशिंग ऑल अ वेरी गुड इवनिंग आपको भी. एंड उम्मीद करते हैं कि आपका डिनर हो गया है और चलिए अभी के लिए फैमिली के साथ थोड़ी ये बातें कर रही हैं और साथ में शायद बैकग्राउंड में हमारी गाने और हमारी आवाज़ गुड रही है. तो आपके फैमिली मेम्बर्स को भी स्पेशल हेलो हाई और ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए टिल 9 PM.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: 8:45 हो चुके हैं अरमान मलिक एंड श्रद्धा कपूर की आवाजों में. वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना एंड इट्स रोमांटिक वन. आई एम वेरी श्योर कि इस गाने को सुनने के बाद आपको थोड़ा और प्यार हो ही जाएगा और आपका जो दिल है थोड़ा और जोर से धड़क भी जाएगा. वैसे कहने वाली बात तो नहीं है कि जब प्यार किया है तो इसको निभाना भी पड़ेगा. हर रिश्तों को अगर इंसान बखूबी से निभाए तो बस शिकायत की गुंजाइश ही नहीं रहेगी. इसीलिए कभी कभी बिना कुछ कहे ही हमें बहुत कुछ कर जाना चाहिए. और जिनसे आप प्यार करते हैं उनके सामने ज्यादा कुछ एक्सप्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. इट्स ऑल अबाउट द म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग.

0: जन्म जन्म का साथ देने का वादा तो बिल्कुल हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो हमने ज़रूर ट्राई किया कि 7 से लेकर 9 बजे के बीच हम साथ देने के लिए आ गए थे. एंड आई होप कि यू हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू दिस ब्यूटीफुल कूल म्यूज़िक. एंड चलिए इसी के साथ हमारे जाने का वक्त आ चुका है. कल मुलाकात होगी ऑफकोर्स एक अलग ही अंदाज के साथ और एक अलग ही मूड के साथ. तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाज़त. टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, नीतू का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। वेल, आज मूड थोड़ा सा अलग है, नहीं ठीक ठाक है, लेकिन आज कुछ शायराना अंदाज में है, हो जाए। It's your late night grooves, by the way. So wherever you might be, stay well tuned. 3 ghante hai bhai, saath chalenge till midnight.

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Musti.
2: ये कायनात कुछ भी नहीं,
3: कुछ भी नहीं,
2: कुछ भी नहीं, गरन में वो नहीं,
3: वो है कौन?
4: कप्तान साहब।

शायरी की बात हो और मोहब्बत ना हो मोहब्बत क्या है सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं बल्कि किसी के ख्यालों में अपनी खुशी ढूंढने का नाम है मोहब्बत वो एहसास है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह देता है कभी किसी की मुस्कुराहट में मिलती है कभी किसी की आवाज में और कभी किसी की खामोशी में मोहब्बत में अल्फाज कम पड़ जाते हैं जब दिल किसी के लिए सच में धड़क जाता है एक चेहरा बस जाता है आंखों में ऐसे कि हर ख्वाब उसी के रंग में ढल जाता है

कभी-कभी किसी इंसान की एक छोटी सी मुस्कुराहट पूरे दिन को खूबसूरत बना देती है, है ना? प्यार में जरूरी नहीं कि हर पल बड़े-बड़े अल्फाज बोले जाएं। कभी एक नजर, एक स्माइल, एक छोटा सा ख्याल रखना भी दिल को बहुत गहरा सुकून देता है। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, तुम मुस्कुरा दो तो मौसम बदल सा जाता है। वाह वाह, तुम मुस्कुरा दो तो मौसम बदल सा जाता है, तुम पास हो तो हर लम्हा संभल सा जाता है। क्या नाम दूं इस एहसास को, ये समझ नहीं आता, बस तुम्हारा ख्याल आते ही दिल मुस्कुराता है।

जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कीमती होते हैं जिनके होने से हम अपने आप को थोड़ा ज्यादा खुश थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग और थोड़ा ज्यादा कंप्लीट महसूस करते हैं इसलिए अगर किसी की मुस्कुराहट की वजह आप बन सकते हैं तो जरूर बनिए किसी को खुश करने के लिए हमेशा बड़े जेस्चर्स की जरूरत नहीं पड़ती एक प्यारा सा मैसेज एक सिंसियर कॉम्प्लीमेंट या एक सिंपल सा मैं हूं ना भी किसी के दिन को बदल सकता है

सच्चा इश्क सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता, इश्क में समर्पण होता है, रिस्पेक्ट होता है, ट्रस्ट होता है और एक दूसरे की खुशी की फिक्र होती है। प्यार तब और खूबसूरत हो जाता है जब हम सामने वाले को बदलने की कोशिश करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं।

मेरे हो ये कहना आसान है पर तुम खुश रहो ये चाहना मोहब्बत है साथ मिले तो खुशी से जीना और दूरी में भी दुआ करना मोहब्बत है

पोजेशन से ज्यादा अप्रिसिएशन जरूरी है दोस्त। किसी को अपना कहना अच्छा लगता है, लेकिन किसी की इंडिविजुअलिटी का सम्मान करना उससे भी ज्यादा खूबसूरत होता है। मोहब्बत वो नहीं जो कहे तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, मोहब्बत वो है जो कहे तुम जहां भी रहो खुश रहो। और जब दो लोग एक दूसरे की फ्रीडम, ड्रीम्स और इमोशंस का रिस्पेक्ट करते हैं, तब रिश्ता सिर्फ रिलेशनशिप नहीं रहता, वो एक खूबसूरत कंपेनियनशिप बन जाता है।

कुछ लोग जिंदगी में आते हैं और फिर चाहे वक्त उन्हें हमसे दूर कर दे, उनकी यादें दिल से कभी दूर नहीं होती। कुछ कन्वर्सेशंस, कुछ स्माइल्स, कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स और कुछ अधूरे ख्वाब हमेशा दिल के किसी कोने में जिंदा रहते हैं। वक्त गुजर गया मगर यादें वही हैं। वक्त गुजर गया मगर यादें वही हैं। फासले बढ़ गए मगर बातें वही हैं। तुम पास नहीं हो फिर भी लगता है मेरे दिल में आज भी तुम्हारी जगह वही है।

यादें कभी आंखों में नमी लाती हैं और कभी होठों पर मुस्कान, शायद इसी का नाम जिंदगी है। कुछ लोग हमारे साथ रहते हैं, कुछ हमारी यादों में। और याद रखिए, हर रिश्ता अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका सफर बेकार था। कुछ रिश्ते हमें प्यार करना सिखाते हैं, कुछ हमें खुद को समझना सिखाते हैं, और कुछ हमें ये सिखा कर जाते हैं कि दिल को और भी मजबूत बनाना है।

रात का अपना एक अलग ही रोमांस होता है। चांद, ठंडी हवा, हल्की सी खामोशी और किसी खास इंसान की याद, ये सब मिलकर दिल में अजीब सी मिठास भर देते हैं। अर्ज है, चांद से पूछा मैंने, इतना खूबसूरत क्यों है तू? वाह वाह। वो मुस्कुरा कर बोला, शायद किसी की याद में हूँ मैं भी। मैंने कहा, मेरी रात तो उसके ख्यालों से रोशन है। चांद बोला, फिर तुम्हारी मोहब्बत ही तुम्हारी चांदनी है।

कभी-कभी हम किसी के साथ फिजिकली नहीं होते, लेकिन इमोशनली वो इंसान हमारे बहुत करीब होता है। फोन दूर हो सकता है, शहर अलग हो सकते हैं, लेकिन दिल की दूरी जरूरी नहीं। तो आज की रात किसी अपने को याद कीजिए, उनके लिए एक दुआ कीजिए और दिल से कहिए, तुम मेरी जिंदगी का वो खूबसूरत हिस्सा हो जिसे मैं वक्त के साथ कभी खोना नहीं चाहता।

अक्सर किसी और की मोहब्बत में अपनी खुशी ढूंढते हैं, है ना? लेकिन जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप खुद के साथ होता है। खुद को एक्सेप्ट करना, अपनी कमियों को समझना और अपनी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करना भी मोहब्बत है। खुद को भी वक्त दिया करो, अपने दिल की भी सुना करो। दुनिया को खुश करते करते थक जाओगे तो थोड़ा खुद के लिए भी जिया करो।

मतलब ईगो नहीं होता खुद से प्यार का मतलब है अपनी इज्जत करना अपनी बाउंड्रीज समझना और अपनी इमोशनल पीस को इम्पोर्टेंस देना जब इंसान खुद को समझने लगता है तब वो दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कम और अप्रिसिएशन ज़्यादा करने लगता है और तब रिलेशनशिप्स भी ब्यूटीफुल और हेल्दी होने लगते हैं

मोहब्बत में इंतज़ार का भी अपना एक रंग होता है। जब किसी खास इंसान का मैसेज, कॉल या एक छोटी सी मुलाकात का इंतज़ार होता है तो वक्त जैसे थोड़ा धीरे चलने लगता है। उसके आने का इंतज़ार कुछ यूं करते हैं जैसे बारिश का इंतज़ार जमीन करती है। वो आए तो दिल खिल जाए और ना आए तो यादें उसकी महकती हैं। इंतज़ार का मतलब अपनी ज़िंदगी को रोक देना नहीं है। सच्चा प्यार हमें पेशेंस सिखाता है लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी सिखाता है। किसी को वक्त देना अच्छा है लेकिन अपना पूरा वक्त किसी के रिस्पॉन्स के इंतज़ार में खर्च कर देना ये ज़रूरी नहीं। जो रिश्ता सच्चा होगा उसमें दोनों तरफ से एफर्ट होंगे। मोहब्बत में इंतज़ार कीजिए लेकिन अपने सपनों का इंतज़ार मत कीजिए। ज़िंदगी आपके लिए भी खूबसूरत मौके लेकर खड़ी है।

कभी हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से डरते हैं, सोचते हैं सामने वाला क्या सोचेगा, जवाब क्या मिलेगा, या कहीं रिश्ता ऑकवर्ड ना हो जाए। लेकिन दोस्त, कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो कह देनी ही चाहिए। जो बात दिल में है कह दिया करो, जो अपने हैं उन्हें अपना कह दिया करो। जिंदगी का क्या भरोसा मेरे दोस्त, आज जो पास हैं उन्हें आज ही प्यार दे दिया करो। प्यार का इजहार सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स तक लिमिटेड नहीं है। माँ बाप को थैंक यू कहना, दोस्तों को अप्रिशिएट करना, सिबलिंग्स को हग करना और किसी अपने को बताना कि तुम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये सब लव के फॉर्म्स हैं। क्योंकि हम अक्सर समझते हैं सामने वाला बिना कहे समझ जाएगा, शायद कभी समझ भी जाए, लेकिन एक बार कह देने से जो वार्म्थ मिलती है वो अलग होती है। तो दिल की बात दिल में मत रखिए। प्यार को एक्सप्रेस कीजिए, अप्रिसिएशन को एक्सप्रेस कीजिए, ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: RM2 रेडियो मस्ती
1: आपका ये बजा ही सही के हम